लता जी की आवाज में हम आपको सुनाएं, जहाँ तक मेरा ख्याल आप बहुत इत्मीनान से सुन रहे होंगे ये गीत और बहुत सुन रहे थे ये शानदार गीत उफ़ुरफ़ान हिंदुस्तानी रेडियो। अच्छा चलिए, गीत तो समाप्त हो गया, तो गीत अगर जो समाप्त हो गया तो हम पेश करते हैं अगला गीत, और जिसमें लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार है, फिल्म रूप तेरा मस्ताना। नेगेटिव ट्विन सही सुनते

दिल की बातें दिल ही जाने, लता जी और किशोर कुमार जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत, और हमने पेश की फिल्म रूप तेरा मस्ताना में से निकाल कर 1972 का ये फिल्म है, आनंद बख्शी की लिखी हुई गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलो हम पेश करते हैं, बढ़ते हैं चोरी चोरी के ओर। फिल्म चोरी चोरी में जितने गाने हैं सब बहुत प्यारा है, उनमें से एक गीत मैं निकाल रहा हूँ, बस आप सुनिए कौन सा गीत। लता जी और मन्ना डे जी,

पंछी बनू बन के फिर लता जी की आवाज में फिल्म चोरी चोरी में से निकाले हैं ये शानदार गीत। हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए आपको धीरे धीरे मैं कहीं और ले जा रहा हूँ, जी हाँ धीरे धीरे कहीं और ले जा रहा हूँ, और आपको सुनाता हूँ ये गीत।

The Man with Golden Voice, तरत साहब में आपको सुनाए हैं, उनके आगे गमे दिल भुलाना पड़ा और ये शानदार गीत छुपाना पड़ा। और ये शानदार गीत हमने पेश किया वो फरफाहून हिंदुस्तानी रेडियो www.fahoon.fm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के इन मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। हमने कहा था धीरे धीरे आपको पीछे लग जाएंगे सालों में, तो लीजिए हम आपको ये सुना रहे हैं। क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ इस तरह से,

हाँ, दिल से मिला ले दिल प्यार कीजिए, और ये गीत चला लता जी आपको सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, हमने कहा था आपको पीछे पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, तो लीजिए पीछे ले जाते समय हम आपको ये भी सुना रहे हैं उसी समय का। ये बहुत प्रचलित गाना था, बहुत पॉपुलर था, कौन इसे नहीं जानता।

दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म बहार। जी हाँ, फिल्म बहार में से निकाले हैं ये शानदार गीत, बहुत पुराने गीत जहाँ तक मेरे आए, मेरे ख्याल है कितने लोग यही गाना सुन सुन कर आज बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए, आजा हो गए, आजी हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, यहाँ की पर राजा पर नानी भी हो गए होंगे। और ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। उम्मीद है इस गीत से आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गए होंगे। क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म, बिन फेरे हम तेरे, नेगनती नेगनन सैफ तक का ये गीत उषा खन्ना के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। जी हाँ, ये गीत हो सकता है बहुत दिनों बाद आज आप सुनोगे, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, लेकिन ये भी मुमकिन है कि शायद हमारे सहयोगियों ने चलाए होंगे, तो मेरी बदनसीबी है, लेकिन गीत तो मैं चलाऊँगा अवश्य रफ़ी साहब की आवाज़ में। फिल्म बिन फेरे हम तेरे।

दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के रहना है रफी साहब और उषा खन्ना के साथ। पर उषा खन्ना जी के साथ खुद नेकते नेकन से इफ तक का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो ये है

0: इन प्यार की राहों में ये शानदार गीत चलाया कार्यक्रम में हमने पेश की। हमने शायद तेरे गीत रखे हैं, इसे हम चून नहीं किए हैं, सुने भी नहीं हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं उसका टाइटल, अच्छी भी लगती हूँ सुंदर भी लगती हूँ। तो चलो सुनते हैं कि लता जी क्या कह रही है। फिल्म है गर्म खून, अरे वाह क्या बात है, फिल्म है गर्म खून और लता कह रही है मैं अच्छी भी लगती हूँ सुंदर भी लगती हूँ। तो चलो सुनते हैं।
1: अच्छी भी

आ जा रे आ जा सनम, अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ। शंकर जय किशन के साज था। जी हाँ, निकली ताकत का ये फिल्म है। फिल्म गरम खून, जैसे गरम खून है वैसा फिल्म की गीत भी है, और लता जी आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म पूर्णिमा में से।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म पूर्णिमा में से निकाल कर ये गीत हम पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं हम अगला गीत चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, फिल्म मिलाप में से निकाल रहे हैं, ये भी निकितिन ट्विन से ही तक का है, ब्रिजभूषण के साज पर। और चलिए हम आपको सुनाते हैं माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला।

कई सदियों से कई जनों से द हार्ट ऑफ मिलियंस मैथी मुकेश आपको सुनाए ये शानदार गीत आओ चलाओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, देखते हैं तो ब्रिजभूषण के साज पर। जी हाँ, ब्रिजभूषण के साज पर निकली त्वें से ही तक का ये गीत हम आपको सुनाए फिल्म मिलाप में से निकाल कर। जी हाँ, आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप सबको हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

सुचिता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और गीत हमने निकाले हैं निकली फेह फेह तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो रे करे 80 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था, वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेकदी फैफन सैफन तक नौशाद अली के साज पर। और लता जी

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी। जी हाँ, आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं निगेटिन ट्विन शस्त्र और ओपन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

कारण कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाए मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो है क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुना हो, महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, फिल्म का नाम है निगेतिन तुई शस्त्र से हम निकाले हैं। इस तरह से हम आपको सुनाते हैं।

ये दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म लिखती तो ऐसे कहा देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप भी हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर ये आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। आशा जी और रफी

एवरग्रीन, जी नहीं एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद गोल्डन वॉइस, तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिलिप अनुपमा में से निकाल कर नेकतीन सेस्तक और हेमंत कुमार के साज है लता जी है।

0: गाओ।
1: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं दावत पे जाना।
0: अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है

धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार। फिल्म अनुपमा में से निकाले हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की। और निगेटिव सेशन सेस का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं, किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर। क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार?

हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं ये चटपटा चुटकुला गीत। एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ़ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनके आँखों की तारीफ़ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, रफ़ी साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चासाज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये गीत।

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी भी साथी और हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटी पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए। ओ परफॉर्मिंग स्थानीय रेडियो, जी हाँ, फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए, माई टू मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, इस तरह से।

वाह क्या बात है लता जी, और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म झूला में से निकाल कर, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ और आप मैं चला रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। हाँ अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ तो ये है इस तरह से माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फीर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैथ मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए, चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकति एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म अली बाबा एंड द 40 थीव्स यानी अली बाबा और 40 चोर। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, गीत सुनिए।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है, यानी खुशकी दिन इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। आओ, ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेकदिन ससन सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से। जी हाँ,

ललिता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिलके ये शानदार डुएट आपको सुनाए हैं ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य, और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा, पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निकति तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। दिन से ही फिर तक कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपन एयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वैत हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली। और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में, निकती निघ्न फैफ्त का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

हे मानव, अब तू इस अमृत वाणी की मसाल लेकर अपने भीतर और बाहर के अंधकार से निकल, क्योंकि ये अमृत वाणी तेरा कवच भी है और शस्त्र भी। इस अमृत वाणी की मसाल अपने युग के धृतराष्ट्रों, दुर्योधनों और शकुनियों को पहचानने में तेरी सहायता करेगी। इस मसाल के प्रकाश में तू ये देख सकेगा कि अन्याय आज भी उतना ही ढीठ है जितना प्राचीन हस्तिनापुर में था। तू देख सकेगा कि धर्म ने अधर्म की चादर ओढ़ रखी है। हे मानव, तू इनसे हटकर अपना रास्ता बना, नहीं तो ये तुझे भी अपने अंधकार में घसीट लेंगे। तू प्रकाश का उत्तराधिकारी बन, तू न्याय का उत्तराधिकारी बन, तू धर्म का उत्तराधिकारी बन और अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना। यही मोक्ष है, यही अमृत वाणी है।

हमारे सभी अमृतवाणी सत्संगियों को प्रभु प्रेमियों, मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मैं आपका सेवक गोपाल परदेसी बाबा। सत्संगियों, आपको आज मैं तीसरा भाग, परमात्मा सबके लिए है तीसरा भाग यानी आखिरी भाग आपको बतलाने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं। प्यारे प्यारे भाई बहनों, संसार में रहकर संसार की इच्छा से अलग कैसे रह सकते हैं? संसार में रहकर संसार की इच्छा से अलग कैसे रह सकते हैं? भक्तों, संसार में रहकर भी सब तरह की इच्छा होती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है ना। बनावटी इच्छा सब तरह की कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। भोजन में भी दो आदमियों की एक इच्छा नहीं होती है भक्तों। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को मिर्च अच्छी लगती है, किसी को थोड़ी मिर्च अच्छी लगती है तो किसी को ज्यादा मिर्च अच्छी लगती है। इस तरह संसार की सब इच्छाएं सबको नहीं होती। अतः संसार की इच्छा छूटने वाली है, छूटने वाली है। जैसे संसार की दूसरी इच्छाओं से आप अलग रहते हैं, ऐसे ही जिन इच्छाओं को आपने पकड़ रखा है उन इच्छाओं से भी आप अलग रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उनसे अलग रह सकते हैं। सज्जनों, वास्तव में आप स्वयं संसार में रहते ही नहीं बल्कि परमात्मा में ही रहते हैं। संसार में तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि रहते हैं, मगर आप मतलब आत्मा तो परमात्मा में ही रहते हैं। ये समझने की कोशिश करना। आप अगर ये समझ जाए फिर आपकी बेड़ा पार हो जाएगी। सज्जनों, जो आपके नहीं है उन शरीर आदि को तो आप अपना मान लेते हैं, और जो आपके अपने हैं उन परमात्मा को आप अपना नहीं मानते। ये तो खास भूल है सज्जनों, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप।

तो अब ये है कि परमात्मा को देखे बिना अपना कैसे माने, ये सवाल है ना, कि परमात्मा को देखे बिना अपना कैसे मान ले। प्रभु प्रेमियों, आप स्वयं दिखते हो क्या? आप मतलब आप अपने आत्मा को, आत्मा खुद अपने को देखते हैं? आप कहते हैं कि शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो इससे सिद्ध होता है कि आप शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से अलग है, अलग है आप। आप कैसे हैं, कैसे हैं आप? आपका रंग रूप कैसा है? आप स्वयं नहीं दिखते, फिर भी अपने को मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते हो? सज्जनों, सज्जनों बैठे हुए प्यारे प्यारे बच्चों, आप जो वहां बैठे हुए हैं, समझ रहे हो या नहीं? हाँ ठीक है, तो अभी तो बात चल रही है ना, उसकी तरफ आप ध्यान तो दो। जिस इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती उसको तो छोड़ दो, छोड़ दो, और जिस इच्छा की पूर्ति हो सकती है उसको पकड़ लो। बार बार मैं बतला रहा हूं, समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं, जिस इच्छा की पूर्ति हो सकती है उसको पकड़ लो। इतनी ही तो बात है भाई बहनों, इतनी ही तो बात है, सिद्धांत की एकदम पक्की बात है ये। क्या मुश्किल है इसमें? कौन सी गड़बड़ी है? है गड़बड़ी है, आपकी आदत हो चुकी है ना, दुनिया में फंसे हुए हो, वही गड़बड़ी है। अब छोड़ना मुश्किल हो गया। तो जिसकी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ है ही नहीं, और दुख जिसके नजदीक ही नहीं पहुंचता, उसकी प्राप्ति आप सबको हो सकती है, मगर हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। उनके बारे में बात करते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर विश्वास आपको होता तो आप उनको कब के ही पकड़ लेते, कब के ही पकड़ लेते सज्जनों। परंतु ये तब होगी जब आप दूसरी यानी सांसारिक इच्छा नहीं रखेंगे, तब हो पाएंगे। अगर परमात्मा की इच्छा भी रहेगी और संसार की इच्छा भी रहेगी तो काम नहीं बनेगा, कोई भी काम नहीं बनेगा। आप बीच में लटके हुए रहेंगे, अटक जाएंगे आप सज्जनों। दुविधा में दोनों गई, माया मिली ना राम, ना घर के ना घाट के आप होंगे सज्जनों। अब सवाल है, सवाल है यानी प्रश्न है कि भगवान सांसारिक कामना पैदा कर देते हैं, तो प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों, भगवान कभी किसी की कामना पैदा नहीं करते, नहीं करते हैं। कामना तो आपकी अपनी बनाई हुई है। आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो भगवान मिटा देंगे, उस कामना को मिटा देंगे, अन्यथा वो समाप्त होने वाला नहीं है सज्जनों। जिससे आप पर आफत आए ऐसे काम भगवान नहीं करते,
क्योंकि आप भगवान के अंश है, भगवान के संतान है। अंशी अपने अंश का बिगाड़ कैसे कर सकता है? एक माता पिता अपने बच्चों को कैसे दुखी कर देंगे? असंभव बात है। तो परमात्मा अगर माता पिता है, जगत पिता है, तो आपको कैसे वो दुखी करेंगे? दुखी तो आप खुद हो जाते हो। जैसे बच्चे गलत काम करके पुलिस के हाथ में लग जाते हैं, तो क्या माता पिता ने किया है? नहीं ना, वो तो बच्चे के अपना ही खुद का विचार है। माता पिता कोशिश करते हैं उनको सही रास्ते पर लाने के लिए, डांट कर, दुलार देकर या कोई भी तरह से कोशिश करते रहते हैं माता पिता। इसी तरह भगवान भी कोशिश करता ही रहता है कि हम बच्चे सही रास्ता पर चले, ताकि हमको कोई दुख ना हो पाए। मगर हम तो जानबूझकर उस रास्ते पर चलते हैं जहां दुख ही दुख है, कलह ही कलेश, संकट। सज्जनों, जहां प्रेम नहीं वहां शांति नहीं हो सकती, और जहां पवित्रता नहीं वहां प्रेम नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रखना सज्जनों। एक बार निकले बोल वापस नहीं आ सकती, असंभव। और सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सत्य है, तिनके हृदय प्रभु आप। जिसने मां की कोख देखे हैं, वो कब्र जरूर देखेगा, सिर्फ आगे पीछे का फर्क है। सज्जनों, गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं, गरीब वो है जो और मांगते रहते हैं। प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवन, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। तो प्यारे प्यारे अमृतवाणी के प्रेमियों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको तीसरा भाग यानी आखिरी भाग बतलाया, परमात्मा सबके लिए है। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मिलेंगे फिर अगर रहा।

0: बाप रे बाप रे बाप रे।
1: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके लिए पेश किया जाता है कुछ अनमोल गीत आपके लिए।

ये सब आप ही के लिए चुन चुन कर और लाया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से चलते हैं सुनने के लिए।

रस्ते में दो अनजाने, अकेले मत जइयो, अकेले मत जइयो। और इस बार हम आपको लेकर चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, तरह तरह के गीत हमारे गायक और गायिका ने गा गा कर और छोड़ दिया है, जो लुप्त होने को जा रहे हैं, पर हम लुप्त नहीं होने देंगे। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तान रेडियो से ये अनमोल गीत।

तू तू तू ये घर घर की कहानी है, हम तो घर में चूल्हा फूके और मजे करे। तू गीत का बोल लता जी और महेंद्र की जी जो सुना दी है और फूफा जी के ऊपर भी गीत बनाया गया है, तो यहाँ से हम जरूर सुनेंगे कि फूफा जी का हाल क्या है।

0: जी मेरे सुनने वालों, आपने भी श्रवण कर लिए कि फूफा जी पे भी सुंदर सा गीत बनाया गया। फिल्म पूर्णिमा ने पिक्चराइज किया गया फिल्म है। अभी तो मैं नहीं थी
1: में ये
0: अपने लिए जिए तो क्या जिए, हम सुनते हैं मन्ना दे।

0: नदी जी के आवास में अपने लिए जिए तो क्या जिए। और इस बार हम सुनेंगे एक बार फिर मन्ना दे जी के आवास में, साथ दे रहे रफी जी।
1: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

0: असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

घर बार के बारे में, मामा के बारे में, फूफा के बारे में, ये सभी के बारे में यहाँ पर गीत तक बना दिया गया है और यहाँ से आपका फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से आपके लिए चला दिया जाता है।

गजब भयारे भाई हाय हाय हाय, केला गुरु को चूना लगाए, जनता को जो किसी कुल्लू बनाए, और दूध वाले

स्वामी ने तो भगवान देखा है। हाय हाय हाय हाय, कुछ लोगों का धंधा हुआ

पुराने से पुराने गीत आपके लिए पेश किया जाता है। ये फिल्म पैगाम से निकाला गया, फिल्म पैगाम से निकाला गया है रफी जी और आशा भोसले जी के आवाज में। और अगर आप जो सुने हैं ना, आप सुनते हैं सुनने वालों, हम आपको दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। और ये गीत में भी, ये गीतों में भी कितनी सच्चाई छुपा हुआ है। उन दिनों में ये सब गीत बनाकर गाकर और रख दिया है हमारे आज के लिए। हम आज सुनते हैं तो कितनी हकीकत है इसमें। मेरे प्यारे सुनने वालों।

ये चूल्हा ये चौका ये झाड़ू ये बर्तन ये आटा बटाटा ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरे की। पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास।

चार दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब।

जरूर से अगर आप दास चढ़ाए होंगे तो जरूर से वो एक रोज गल जाएगी किशोर दास जी की आवाज में कि एक रोज हमारी भी दाल गलेगी।

वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है।

क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। हर पल महत्वपूर्ण है, इसे हमें भी महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। आराम को करने जा रही हूँ हनुमान चालीसा के साथ।

राम राम बोलो, बहुत अच्छा लगता है, श्रवण की है हमने हनुमान चालीसा के साथ। पढ़ते हैं आपके लिए सुंदर सा विष्णु भजन, आपके लिए प्रस्तुत है।

श्री हरि विष्णु हरि नाम से दिन सजे, हरि नाम से दिन सजे, हर कार्य में शुभता बढ़े। विष्णु कृपा जो साथ हो जाए, विष्णु कृपा जो साथ हो जाए, जीवन की नैया पार हो जाए। श्री हरि का नाम जीवन का सबसे बड़ा सहारा है, श्री हरि का नाम जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब हम हर काम को उनके शरण से शुरू करते हैं, तो कार्य में न केवल सफलता मिलता है, बल्कि उनका फल भी पवित्र होता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको हम सभी के ऊपर श्री हरि विष्णु भगवान के कृपा सदा बने।

सुंदर अति सुंदर श्री हरि विष्णु प्रिया जो है उसका भजन आज आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है अपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। आज के दिन, आज के ये पावन सुबह, आज के ये पावन सुबह आपके जीवन में शांति, संतुलन और सेवा भाव भर दे। जब मन में हरि का नाम और कर्म में प्रभु का स्मरण हो तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है।

वो आपका इष्ट है, बस उसी में आप अपना मन लगा लो। जिसने अपने आप को श्री नारायण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया हो ना, कर दिया है, वो मनुष्य ही धन्य है, उसका जीवन सफल है, उसको नारायण अवश्य प्राप्त होंगे। जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान विष्णु की कृपा हम सबके ऊपर बने रहे, हम सबके ऊपर सदा रहे। श्री कृष्ण की वाणी, श्री विष्णु भगवान की वाणी है कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वो आपके पिछले किया गया कर्मों का फल है। श्री कृष्ण जी की वाणी है।

ऐन है और विश्वास है, यहाँ से हमने श्रवण की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। मन को निराश ना करो, मन को निराश ना करो मेरे प्यारे, बस श्री विष्णु जी पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो विष्णु प्रिया, इस बात का एहसास तो कर लो। श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से हम सब पर उनका कृपा रहे। जहाँ जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण होता है, जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण होता है, वहाँ कर्म, वहाँ धर्म, शांति और समृद्धि का वास होता है। और कहते हैं कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? तो प्रेम का वास्तविक अर्थ ये है, सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्रा के प्रति

छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब

जहाँ भक्ति है ना मेरे प्यारे सुनने वालों, जहाँ भक्ति है वहाँ नारायण स्वयं विराजमान होता है। और जहाँ नारायण होते हैं ना, वहाँ हर कष्ट खुद ही मिट जाता है। केवल विश्वास होना चाहिए। धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में, और मान सम्मान केवल एक गलती में खत्म हो जाता है। धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में, और मान सम्मान केवल एक गलती में, एक गलती से एक गलती में खत्म हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे सुनने वालों, इसलिए इन चीजों का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। भक्ति, भक्ति बुद्धि से होता है, जुबान से सुंदरता है। भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है। भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है तो कर्म सुधरता है।

छोटा सा संसार हरे आ जाओ एक बार पुकारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। प्रार्थना की शक्ति से दुनिया का हर विकार समाप्त किया जा सकता है। प्रार्थना की शक्ति से दुनिया का हर विकार प्राप्त समाप्त किया जा सकता है। जरूरत है केवल निश्चय।

0: अरे अरे
1: एक से एक लाजवाब गीत आपके लिए यहाँ से पेश हो रहा है।

कलम आदमी और इंसान से ये सुंदर सा गीत हम सुने ओ नीले पर्वतों के धारा। और इस बार हम सुनेंगे फिल्म नागपंचमी से मैं नदिया की धारा।

नदिया की धारा, सुंदर गीत किशोरदा और आशा भोसले जी की आवाज में, झुकती घटा गाती हवा, फिल्म धूल का फूल से सुनेंगे।

0: अर्धोल का फूल से ये सुंदर सा गीत, मैं तो भूल गई थी ये गीत को, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा। और इस बार हम सुनेंगे जिंदगी एक सफर।
1: सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना,
0: वही तो यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मैं

परम वक्त से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं। जब तक चाहो खुश रहो, ये अपने हाथ में है। आप चाहते हो खुश रहना तो आप खुश रहेंगे। अगर

हरियाली और रास्ता से मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में सुने हम निकलती तुम से आज तक ये पिक्चराइज किया फिल्म है। इस बार सुनेंगे फिल्म ब्रह्मचारी से।

दी हमको मोहम्मद रफी जी, साज और संगीत शंकर जयस किशन। इस बार हम सुनेंगे नीले गगन के तले, फिल्म हमारा से महेंद्र कपूर जी की आवाज में।

गगन के तले, नीले गगन के तले सुने हम, और उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए थोड़ी सी बेवफाई से ये सुंदर सा गीत।

में मौसम मौसम लवली मौसम, थोड़ी सी बेवफाई से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है इस बार बरसात की एक रात से लता जी की आवाज में।

पल है यही कहीं, अमित कुमार जी की आवाज में। और कहते हैं, द बेस्ट मनीर ओम सेल्फ फर्ट्रोवंत विनन इस दिंगन डून वार यू बांग फॉर बेन। इट इज अन हेल ग्रोट उइटागिंग आस यू दैट आन कुन द बेंट यू गोन अन गवेर्डिग पर्सोन दैट कुन यू दैट विल सेगे दैट यू ग्रेंसेन हैव वरलेग। Dat is de beste manier om zelfvertrouwen te winnen, is dingen doen waar je bang voor bent. Succes!

0: साथियों के साथ कोरस के साथ अमित कुमार ने सुना दी कि ऊपर से देखो, नीचे से देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, बस देखो ही देखो, देखते ही रहना है, कहाँ चलना है, कहाँ गुजरना है, कैसे है। मेरी नजरों से खुद को देखो मेरे यारों, मेरी नजरों से खुद को देखो, फिर मेरे प्यार का एहसास तो होगा, फिर शायद ही तेरी जिंदगी में मुझसे ज्यादा कोई खास होगा, फिर शायद ही तेरी जिंदगी में मुझसे ज्यादा कोई खास होगा। तू छोड़ देगी ये जमाना, तू छोड़ देगी ये जमाना, और तेरा हर एक पल मेरा साथ होगा। Geloof in jezelf, mijn lieve mensen, lieve luisteraars, geloof in jezelf, want jij bent sterker dan je denkt. Geloof in jezelf, jij bent sterker dan je denkt. Je hebt alles in je om te bereiken wat je wil bereiken. Omdat je goed genoeg bent. Je bent goed genoeg en je kan het.
1: O Sahi, kis

0: ये सचमुच डैडी डैडी, अमित कुमार अपना पापा को बुला रहे किशोर कुमार जी की बाप बेटा का ये सुंदर सा गीत यहाँ से सुने हम। किसी से इतना भी ना जोड़ना, किसी से इतना भी ना जोड़ना मेरे दोस्त कि खुद की परछाई खो जाए। उसकी खुशी में जीते जी अपना सुकून ही सो जाए। किसी से इतना भी ना जोड़ना कि खुद की परछाई खो जाए, और उसकी खुशी में जीते जी अपना सुकून ही सो जाए। लोग मिलते हैं पल भर के लिए, लोग मिलते हैं पल भर के लिए, और यादें लंबी छोड़ जाता है। जो दिल के करीब होता है अक्सर, हाँ मेरे दोस्त, कि जो दिल के करीब होता है अक्सर, वही सबसे ज्यादा तोड़ जाता है।
1: गाओ बच्चों, तुम भी मेरे साथ गाओ।

फिल्म राज से ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत किया गया है मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और बात तो ये है, हम आपको यहाँ से फिर स्वागत कहती हूँ, हर बार की तरह ये बार भी स्वागत हो आप सभी को, जहाँ भी हो जैसे भी हो। बहुत सारा प्यार मिले आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दुख की बात ये है कि वक्त बहुत कम है, खुशी की बात ये है कि अभी भी वक्त है ना। दुख के बात भी है और खुशी के बात है कि Triste is dat de tijd zo kort is en feinste is dat er nog tijd is. Dus benut het maar goed en eens nog eens goed. Mijn lieve mensen, bij deze Bad Mary Sunieto Zara.

0: वाकई में लड़कियों इतने अहंकार मत करो, क्योंकि लड़के जो है तारीफ करते हैं लड़कियों की। फिल्म कुछ ना कहो से निकाल दिया गया है, ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है 2003 में। बात मेरी सुनिए तो जरा, सिंगर है शंकर मदन मोहन, ना शंकर महादेवन, जी हाँ शंकर महादेवन और महालक्ष्मी आयर जी के आवाज में हमने सुने हैं बात मेरी सुनिए तो जरा। Verspil geen tijd aan pogingen om iemands denkwijze te veranderen, want daar bent u gewoon machteloos. Probeer de plek en de mensen te veranderen, dan kunt u vooruitgang boeken.
1: चाहता हूं।

सुने गले लग जा। सिंगर हे जेवत अली एंड बाजी जोशना। जी हाँ, आ गले लग जा। इसमें अपना कला दिखाई है अक्षय कुमार जी। टच मी टच मी टच मी, खुद को जानने के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, खुद को जानने के लिए मौन रहना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को जानने के लिए उसको सुनना। आप तो समझदार है तो आप समझ गए होगे, है ना। Om jezelf te leren kennen is stilte net zo belangrijk als luisteren naar anderen.

टच मी सोनिया। हाँ बोलते हैं छूने के लिए किए, छूने के लिए सोनिया छुओ ना। फिल्म धूम तुए से निकाल दिया गया है। कलाकार इसमें है ऋतिक रोशन, अभिषेक, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, बिपाशा बासु और गीत के गाने वाला है के और अलीशा चिनई। कहते हैं कि अपने बारे में, मैं भी कहती हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों कि अपने बारे में कभी बुरा मत सोचना, सपने में भी अपने बारे में कभी बुरा मत सोचना, क्योंकि सुनिए जी, क्योंकि उसके लिए ऊपर वाले ने पड़ोसियों को और पर रिश्तेदारों को रखा है। आप समझ गए ना। सपने में भी अपने बारे में बुरा मत सोचना। Denk nooit slecht over jezelf. Denk nooit slecht over jezelf. Want God heeft daarvoor buren en familieleden geschapen. Er zijn ook wel lieve buren en lieve familieleden uitgezonderd.

चलो ये गीत भी यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं इस वक्त के लिए और आपके लिए एकदम बेमिसाल गीत यहाँ से तैयार करके रखी हूँ, क्योंकि आप वही ग्रेट्स सुनने वाले हैं ना, इसलिए। और यहाँ पर एक बात भी कहना चाहती हूँ, वो ये है कि लेर उम एल का सिटुआसी खुलक तसैन, या लेर उम इन एल का सिटुआसी खुलक तसैन वांत खुलक वर्ड हक्रियर्त दोर ये खदाखतन नी दोर द उमस्तांदख हेदन। You're my love, fulfilling partner, see?

Sweta Pandit, Susi Q en Earl. Yes, Milker, je git a guy, you are my love. फिल्म पार्टनर से आपने सुने हैं और फाउन रेडियो ने सुना दी है आपको। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई अपनों की खातिर अपने अपनों से दूर हो जाता है और कोई अपनों के खातिर अपनों से दूर हो जाते हैं। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर हो जाता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर हो जाता है। अपने और सप...

फिल्म हाउसफुल से निकाल दिया गया है गीत डू यू नो, और गीत का गाने वाला है शान और श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल और शान से ये सुंदर गीत हमने सुने हैं आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से। ये बस निकाल दिया गया है हर किसी को खुश करने की कोशिश में, स्वयं को मत खोइए। हर किसी को खुश करने के लिए अपने आप को मत खोइए, क्योंकि जिनकी सोच विषैली है, जिनकी सोच नहीं खाती है, उन्हें आपकी अच्छाई नहीं केवल आपकी कमियां दिखाई देती है। Verlies jezelf niet door te proberen iedereen tevreden te stellen. Want dat gaat niet en het kan ook niet iedereen tevreden stellen. Dat gaat niet, is onmogelijk. Daarom verlies jezelf niet door te proberen iedereen tevreden te stellen. Want mensen met een negatieve denkwijze zien je goede kanten niet. Ze zien alleen je tekortkoming. Dus wees alert.

हाउसफुल नंबर दो से निकाल दिया गया है राइट नाउ या इसी वक्त। गीत का बोल है राइट नाउ एंड न्यू।

You're mine, oh girl, you're mine, ए लड़की आप मेरे हो। हाँ हाँ, म्यूजिक है इसमें शंकर महादेवन की। सिंगर हम देखे तो लॉय मेंडोंस, हाँ हाँ, कुछ अलग अलग नए नए कलाकार भी है, नए नए सिंगर भी आ गए हैं। हम देखे तो का हो गए है यहाँ पर हमारे इंस्ट्रूमेंटल वन के, आ गए हमने खोज कर और लेते आए है, तो यहाँ से सुनते हम इंस्ट्रूमेंटल। दुनिया में किसी इंसान से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। Het gehechtheid aan iemand kan soms ook vervelend uitkomen. ज़िंदगी में किसी इंसान से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता है, क्योंकि सुनिए जी, अक्सर लगाव से बहुत सारी उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदों अंत में गहरा दुख का कारण बनती है। और आज अक्सर ऐसे लगावों से बचना चाहिए। ओ फरमात गहेख्तहेत aan iemand in deze wereld kan je volledig ruïneren, omdat hechting vaak aanleiding geeft tot veel verwachtingen. En de verwachtingen van anderen leiden uiteindelijk tot diep verdriet. En tegenwoordig is het vaak beter om dergelijke banden

ना मिलेगा दोबारा वो इसी फिल्म से सियोरिता आपने सुनी। De gedachten van mensen zijn tegenwoordig ongeveer zo geworden als iemand huilt, laat hem dan maar huilen. Want wat heb je er nu nou bij als iemand lacht, probeer dan te achterhalen hoe die persoon zo gelukkig blijft. आगे चलना मुश्किल पीछे चलना मुश्किल इसलिए अपने आप में अपने विचार में जो अच्छा है आपके लिए जो आप खुद सोचते हैं उसी रास्ते पर बस आप चलो। लोग क्या कहेंगे, लोग तो है कहने वाले। इस घंटे के लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देती हूँ सुनने के लिए।

आइए बाहर को हम बांट ले फिल्म तकदीर से। फिल्म तकदीर से ये सुंदर सा गीत आपके लिए निकाल दिया गया है और भी चला दिया गया है, आपके कानों तक पहुंचा दिया गया है। शब्द शब्द शब्द शब्द में

कला से हम श्रवण करेंगे फिल्म अलबेला से। मेरे प्यारे सुनने वालों की किस्मत की हवा कभी नरम तो कभी गरम, सब झेलते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पता है रुकने का नाम मौत, चलने का नाम जिंदगी। बस कदम आगे ही बढ़ाते चलो, चलते चलो।

Yes, yes, yes, my dear. That's life, eh? Jeevan kabhi naram to kabhi garam. जैसे खाना गर्म रहता है तो आप खा नहीं पाते, बल्कि थोड़ा से हल्के से गर्मी रहे उसमें तो जरूर से आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। आपको, जी हाँ मेरे प्यारे सुने, आपने ठीक सुनते हैं कि आप

शमशाद बेगम जी की आवाज में हमने यहाँ से श्रवण की है सुनने है कि दुनिया का मजा ले लो मेरे प्यारे सुनने वालों और आगे बढ़ो, जरूर से आगे बढ़ो। आपका दिन आपका समय शुभ हो, मंगलमय होवे और आपका ये पल जो है आपको बहुत से शुभकामनाएं भी पेश किया जाता है। फिल्म नजराना से हम इस बार सुनेंगे

पीछे एक दीवाना और मेरे आगे ना, मेरे पीछे एक दीवाना और मेरी आगे एक दीवानी, फिल्म नजराना से यहाँ से मिलकर और हम सब मिलकर श्रवण कर ली है शनिवार के सुबह की कार्यक्रम यहाँ से आपके लिए पेश हो रहा।

और यहाँ से ये सुंदर गीत मांग किया गया है, तेरे नैनों ने चोरी किया। हाँ हाँ, और ये मांग की है सुतमेर के रहने वाली श्रीमती, हाँ एफा झांकले, हाँ श्रीमती मीला जी, जो रेडियो के करीब होकर घर के काम कर रहे हैं। नहीं अबे तो काफ़ी काफ़ी अबे काम करे के समय ना है, लिफ ऑन द बेड करे के समय हम बेचे रिलैक्स मोमेंट नहीं मन मैं तो बाकी कॉफ़ी एन एन लेकर बोतर हम पिदर बै एंड फाहो नतीरलक नित मिशन। फिल्म का नाम प्यार की जीत और ये फिल्म 1948 के पिक्चराइज किया गया है। मुझे पता नहीं आप थे या नहीं थे, पर मैं अभी नहीं थी उन समय पे। फिर भी आपके लिए सुंदर सा गीत, तेरे नैनों ने चोरी किया।

तेरे नैनों ने चोरी किया गीत का बोल है, और ये गीत सुरैया जी खुद ने गाई है, और सुरैया जी भी इस फिल्म में अपना कला भी प्रदर्शित की है। फिल्म का नाम है प्यार की जीत जी, और प्यार की जीत वाकई में हमेशा होता है, और ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है नई खंतीन अख्तम फेर तक में। कितना अजीब लगता है सुनने के लिए ना, नई खंतीन अख्तम फेर तक। और ये सुंदर सा गीत जो हम सब ने मिलकर सुने हैं, फरमाए हैं, मांग की है सुतमेर के रहने वाली मीला जी, धन्यवाद मीला जी। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो सुनते हैं, फॉलो करते हो, तो जरूर से आपको भी मौका है यहाँ से अपना खास फरमाइश जो आज के लिए आप सुनना चाहते हैं, लात में दावेद। ये सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल के बाद आपको और मैं भी यहाँ से तैयार हूँ सुनने के लिए और आपको सुनाने के लिए।

Prachtig, prachtig. Old is gold wordt altijd gezegd en u hoort het zelf. Filmkanaam Baiju Baura, 1952 KF Picture is hoe film he. Muziek is me he, muziek director Nausate ji. Aur geet jo gai jo humne milkar sune he, Lata ji ke awaaz me, Shamshad Begum aur मोहम्मद रफी ये तीनों मिलकर ये सुंदर सा गीत गाकर और हमारे हाथ छोड़ गए हैं। और डायरेक्टर इस फिल्म का नाम है फिल्म का है विजय भट्ट। ये सब मिलकर काम करते हैं तो फिर जाकर एक एक फिल्म तैयार होता है और फिल्म में जो गीत हमको मिलते सुनने के लिए काफ़ी ऐसे भी होता है कि फिल्म के गीतों के जरिए से फिल्म भी हिट हो जाता था। ये सब फिल्म देखने के काबिल है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको कभी शिकायत करने के मौका नहीं रहेगा।

हाँ वो शम्मा तू बता कि आपके दीवाना परवाना कौन है। और पहले के गीत आप जैसे सुनते हैं तो लगभग 3 मिनट के रहते थे जी। 3 मिनट के गीत, इसमें बहुत से प्यार और गीत और संगीत जो जैसे बचाया गया है। ओ दैट इज गवोन हैट स्ट्रेल्ड गवोन द ओरे। फिल्म दास्तां से मिलकर सुने हैं और इस बार आपके कानों तक लाया जाता है कि आग लगी तन मन में

अच्छा लगता है सुनने के लिए ना इंस्ट्रूमेंटल, ये नए नए है आपके लिए, लेटेस्ट लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटल और लेटेस्ट गीत आपके लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से पहला आपके कानों तक लाया जाता है। अमान ओफरले द फ्रंटल बॉक्सिंग मैट कैंपर, और ये आज के समाचार है। देन हाग के समाचार है, अंतवेन सेस्तिया रहमान एट देन हाग इस ओम इट लेवन गकोमन बाय एन ऑनगेलुक इन Galants oog. De man reed met zijn auto over de N-weg en kwam door onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht, waarna hij frontaal op een camper botste. Het ongeluk gebeurde vrijdag rond 12:30 op de N9 bij Noord-Hollandse Galants oog. En een van de inzittenden van de camper raakte gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht vervoerd worden. De bestuurder is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Ja, er werd ook traumahelikopter opgeroepen voor medisch hulp. Altijd alert blijven. Jab sadak par aap nikalte ho, to main ye hamesha kehti hu ki sirf aage aage na taakna, agal bagal mein taakna, aur aisa karo jaise chameleon, aap jante hain chameleon ek janwar hota hai, reptile, uska aankh चारों ओर देख सकता है, घूम सकता है, चारों ओर वो देखता है। ऐसे मैं कहती हूँ कि आप सड़क पर निकलो तो कमेलियन की आँखें इसे बना लिखना। और एक बात और, घर से निकलते वक्त अपना इष्ट जो है, अपना प्रभु जो है, उनसे भी विनती कर लेना कि जहाँ आप जाओ सुरक्षित से जाए और सुरक्षा से आए। आप करो और देखो कि ये ज़रूर रक्षा होता है। जिसे हम नहीं देखते सिर्फ महसूस करते हैं, वो हमारा रक्षा करता है। और कैमेलियन जैसे आंखें रखना रे मेरे दोस्त। आप मान ले फिक्सर्स जो है ना, फरहाल ये फैट बाइकर्स जो ने, और आए हो जाता है फिर भी ये सब रुकने का नाम नहीं लेता है। ये सब सुई के नोक, सुई के आँख में से जैसे ये सब निकलना चाहते हैं।

कमाल के गीत है और कमाल वाला फिल्म है। फिल्म का नाम जानवर। ठीक है, आपने सुने जानवर फिल्म का नाम है। 1965 में ये पिक्चराइज किया गया है। तुमसे अच्छा कौन है? वाकई में मैं कहती हूँ कि आपसे अच्छा कौन है? इवन द एक यूनिक, हाँ द लेजेंड, द लेजेंड मोहम्मद रफी जी की आवाज में। और इस बार म्यूजिक डायरेक्टर था शंकर जयकिशन।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में कितनी शरारती। सुरेली गीत, सुरेली आवाज़ सुमन कल्याणपुर जी की, ये दोनों मिलकर ये सुंदर सा गीत गाए दी है। और यहाँ से आपके लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से चला दिया गया है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में फिल्म का नाम जब जब फूल खिले, और जब जब फूल खिले तब तुझे देखा और तुझे चाहा।

what a romantic song. तुझे देखा, तुझे चाहा और तुझे पूजा मैंने, छोटी सी मुलाकात फिल्म का नाम। हाँ हाँ, छोटी सी मुलाकात बड़ा हो जाता है और सालों तक चलता है। 1976 तक में ये पिक्चराइज किया गया फिल्म है। करीबन 1995 तक यार हो चला है ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। 1995 तक यार हो चला है और हमको सुनाई अपने सुरीली आवाज में मोहम्मद रफी जी और सुमन कल्याणपुर। म्यूजिक डायरेक्टर बता दें यहाँ से आपको भी, शंकर जय किशन, और गीत का लेखक है हसरत जयपुरी। जरूर से मौका बनाकर और ये फिल्म जो आपके लिए, फिल्म के गीत यहाँ से आपके लिए चलाया जाता है और नाम बता दिया जाता है, तो जरूर से आप मौका बनाकर फिल्म को फिर से देख लेना, क्योंकि यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ये पुराना यादें जो है ना ताज़ा कर दिया जाता है। वाह नीत ओपन स्पेशल दाग, वाह नीत ओपन स्पेशल दाग। वारोम नीत, ओमदत एल्के दाग यूनिक एंड बिसोंदर इस एंड माक एट सेल्फ अन स्पेशल दाग फान। इस बार फिर एक बार मोहम्मद रफी जी की आवाज में, और ये है छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई। प्यार बन के गले का हार बन गया। उसी फिल्म से एक बार फिर आपके लिए छोटी सी मुलाकात

आप सोचते होंगे ये कौन सा नौजवान ये गीत गाया है, तो यहां से आपको बता दे ये था विशाल हीरा जी। और कितने सुंदर ढंग से मेरे ख्याल से ये अपने ही लिखे हुए गीत गाए और कितने सुंदर ढंग से इसका बोल इसमें था। बैठक गाना गाने के लिए भी एक कला होना चाहिए। बहुत से शवासी है ये सब लड़के के लिए, ये सब नौजवानों के लिए जो कला को आगे बढ़ाते रहते हैं। विशाल हीरा के बाद आपके लिए है संदीप बदलू जी।

0: संदीप बदलू हाँ करके फिल्टर और हमके पठाए सेल्फी बनाए के। संदीप बदलू हमको लेकर आ गए हैं विज्ञापन के ओर।
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer.
3: Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. Een vrouw uit Uden is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Hulpdiensten werken nog aan de volledige identificatie van alle slachtoffers. Alarmcentrale Eurocross krijgt momenteel een enorme stroom aan telefoontjes binnen. Bij het tragisch ongeluk vielen in totaal 5 doden en 40 gewonden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. En tientallen supporters van Feyenoord krijgen een stadionverbod voor de Kuip en mogelijk heel Nederland. De voetbalclub heeft 47 personen geïdentificeerd na incidenten tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans staken tijdens het duel massaal vuurwerk af op de tribunes. Een deel van het vuurwerk belandde in het vak met de supporters van de tegenstander. 7 Cambuur-fans raakten daardoor gewond aan hun gehoor, ogen en huid. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
0: Zeer zeker. Je kunt altijd hier bij Fahon Hindustani Radio terecht. Voor de overlijdensberichten, vermaais, reclame. चार मिनट गुजर गया है, 12 बजकर आपको एक शुभ दोपहर होए। यही आशा उम्मीद है और कहती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, खुश रहना सीखो। जिसके घर में मातम है या कोई गम की घड़ी है, यही दुआ है, प्रार्थना है, आप भी दुआ प्रार्थना करो कि ये दुख की घड़ी जो है, मातम की घड़ी जो है, ये जल्दी से टले। जो नीदरलैंड में आए हैं, उनको हार्दिक से स्वागत है। छुट्टी मनाने के लिए जो आए हैं उनको स्वागत है, और जो छुट्टी मना कर आए हैं उनको भी हार्दिक से स्वागत है। Want ons West is dan ook altijd thuis het best। और जो छुट्टी से जा रहे हैं उनको भी एक शुभ यात्रा होवे। नए मेहमान जो आए हैं, नए शिशु जो आए हैं, नए न्यू बॉर्न जो है, बेबीज जो है, उनको इस संसार में भी स्वागत किया जाता है। और जो शरीर छोड़ दिया है तो उन परिवार में तो बहुत दुख हो गए, तो उस दुख के घड़ी में फाउन हिंदुस्तानी आपके साथ भी है। ये तो हकीकत है, तेस्नित फैन ओम तो हो रमा, ये हकीकत है, ये जीवन की एक सच्चाई है जो छुपाने से नहीं छुपता है, और मानने से भी हम इसे इनकार ना कर सके हैं। जब हम जन्म ली है तो हमें एक रोज जाना पड़ेगा। हम इस संसार में आए हैं छुट्टी मनाने के लिए, अपन बिगड़ा कर्म जो है उसे सुधारने के लिए। Darum zeg ik ook, wijs een ander de vinger nooit, want wij zijn allemaal op dit mrityulok, op dit aarde, om het goede van te maken.

बालापन से कमरिया में दर्दवा है, हमको सुना दी है सुजल उमराव। सुजल उमराव के बाद फूलों से तुम हंसना सीखो। रमन अंगू अखनू

रमन आँखों से यीशु ने हमने फूलों से तुम हंसना सीखो, वाकई में फूलों से तुम हंसना सीखो। औरो औरो औरो औरो आप तो खुद जानते हैं, औरो आपको एक शुभ दिन, अ फंतास्टिस डग फॉर यू, फॉर यू, टाइम फॉर योरसेल्फ, नेम टाइम फॉर योरसेल्फ, ontspan, geniet, ontspan en geniet. En heb een heerlijke dag. Ja. Heb een heerlijke dag. Neem tijd voor jezelf. Tijd voor jezelf. Aur isame aapke liye mohit mahabalike.

बहुत स्ट्रक बजाय से एक्ट एकदम पगारा मोहित महाबली के आवाज में बजवैया के भी तारीफ।

0: जी के आवाज में यहाँ से हमने श्रवण की है दोनों बहिनियाँ। द नंबर वन हिंदी टैलेंट सिंगर फ्रॉम या सुरिनाम या म्यूजिक बाय स्वीट मेलोडीज फॉर एवर मिक्स एंड मास्टर्ड बाय श्रुति रामावत या द एनग एक्ट विशाल केमाई अलियास म्याओ म्याओ। और उन्हीं के आवाज में एक और यहाँ तैयार करके आपके लिए रखी हूँ।
1: तेरी उम्र है 16 साल, तेरी उम्र
0: हैप्पी टाइम फॉर यू सेक्रेट बेबी।

विशाल खेमाए के आवास में पेश किया गया आपके लिए बलोफ योरसेल्फ स्टेरक द सेन, बलोफ योरसेल्फ स्टेरक द सेन सो दैट नीड्स एंड नीमंड योर इनरलक रूस कान फर्स्टोरन। ससुर घर जाना।

मेरे प्यारे सुनने वालों कि आज सवरिया ससुर घर जाना और जाकर भी बहुत धूम धड़का के साथ वहाँ पर अपना घर बसाना। विशाल खेमाई के आवाज़ में इस बार हम आपके लिए आप खनित कर रहे हो, मैं भी यहाँ स्टूडियो में बैठकर और मज़े ले रही हूँ।

अवश्य अवश्य, घबराए कभी तो मत रोना, और जो रोना पड़े तो अवश्य थोड़ा से रो लेना, दिल हल्का हो जाता है। चश्मा लगाए के दीपक कन्हाई, सुनो हम क्या दीपक कन्हाई क्या कहते।

ये दीपक कन्हाई पूछ रहा है, ए लड़की तू कहाँ चले है, चश्मा लगाए के जीवन चलने का नाम है मेरे दोस्तों, जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह हो शाम, दिल से मेरे प्यारे सुनने वालों आप सभी को एक प्यार भरा दिन होवे।

भैया मारे नजरिया छोकड़िया पे विशाल के माई के आवाज में ये भड़कती हुई गीत आपके लिए पेश किया गया है। पांच मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है 1 बजने में मेरे

0: स्पेशल स्पेशल गुजारिश पे आपके लिए यहाँ से चलाया जाता है, और ये गुजारिश सूरीनाम से आ रहा है, जो हाँ हाँ सूरीनाम से भी लोग सुन रहे हैं। स्पेशल स्पेशल मियाओ मियाओ विशाल खेमाई अलियास मियाओ मियाओ।
1: अरे तनी बिल्ली के कहानी सुन ले रे, बड़ा लेसी बिलारवा।

इनका नया एल्बम जो है दोनों बहिनियां आपके लिए भी पेश किया गया है। इस बारे म्याओ म्याओ द मैन हिमसेल्फ विशाल खेमाई।

0: सुंदर सा लौंडा का नाच के गीत हमने सुने रॉबर्ट लकी सरन जी के आवाज में। Ik had nog zoveel willen zeggen, zoveel dingen willen doen, maar nu heb ik alleen foto's en herinnering aan toen. Ik had nog zoveel willen zeggen en dat ik nu niet meer in gedachten blijf, ik teruggaan naar de allerlaatste keer. Ik had nog zoveel willen zeggen dat ik heel veel van je hou. En ik denk met heel veel liefde aan elk moment met jou. Wacht niet tot het laat is als u iets in uw hart hebt, iets goeds hebt om te zeggen. Maak het kenbaar. Anders wordt het weer het zinnetje, ik had nog zoveel willen zeggen. Het willen zeggen, zeg het dan.
1: स्वामी वो नगमा हमेशा याराना ग्रुप जहाँ जहाँ पे हैं हर एक महफिल में और पर ये सब नगमा आते थे लेकिन मौका बार बार नहीं मिल रहा था इसलिए जब जब याराना ग्रुप ने अपना कामयाबी को हासिल किए हैं हर एक महफिल में तो बस खास करके लावा के नगमाए पे पूरा तौल से तो दोस्तों भाई बहनों अब लीजिए मैं फुल कैलिप्सो के साथ अपना ये खास लावा के नगमा ये खास रिकॉर्ड पे पेश करते हैं जो खास तमाम सुनने वाले को शिवा में बहुत पसंद आएंगे तो दोस्तों भाई बहनों लीजिए फुल कैलिप्सो के साथ ये खास लावा का नगमा पेश करते हैं द ग्रेट हॉट शॉट ऑफ यारण ग्रुप के गाने वाला मैं खुद अर्जुन अवतार तमाम चाहने वालों के लिए तो लीजिए डांस कीजिए।

याराना संगीत समाज, याराना संगीत समाज से सुना दे अर्जुन अवतार जी। इस बार हम आपको लेकर चल रहे फिर से वही लावा के गीत द्रौपदी जी के आवाज में।

सोने के कहरवा द्रौपदी जी के आवाज में हमने सुने सोहर था। इस बार फिर हम सुनेंगे द्रौपदी जी के आवाज में सुंदर सा गीत ओल्ड इज गोल्ड, इस बार है लावा गीत।

द्रौपदी जी की आवाज में हम सुन रहे हैं मनिकादार झबिया। सुंदर सा गीत, सुंदर सा लावा सॉन्ग आपके लिए, स्पेशल स्पेशल लावा प्रोग्राम आपके लिए चलाया जाता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। इस बारे राजू सिंह गुलाम।

राजू से गुलाम के आवाज में कि काले वे अयले मड़ुआ में आहा आप लेकर चलते हैं आपको राम दुलारी चुनी के आवाज में एक लावा गीत के ऊपर बेलना बेलरे।

राम दुलारी चूनी की आवाज में की ऊपर आउती बेलना बेल रे स्पेशल आपके लिए फरमाया जाता है। इस बार है श्याम बुधराम जी की आवाज में लावा गीत।

आपके लिए सो का चटनी सुना दी है राजूसी गुलाम और राजूसी गुलाम जी की आवाज में। यहाँ से एक बार और एक सुंदर सा गीत जारी रहेंगे रीना रिकॉर्ड सेंटर के जो

आशनी माता जी की आवाज़ में सुने हम लोग ये सुंदर सा अलावा स्पेशल आपके लिए पेश किया जाता है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। आप जहाँ भी हो जैसे भी हो जरूर से खुशहाल में रहोगे यही आशा उम्मीद है। ये आखिरी गीत इस घंटे के लिए स्पेशल आपके लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से।

0: आपने सुने, देवेंद्र सिंह जी ने सुना दी कि कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, दी एर्स तो अंत मोतेंग, दी एर्स तो अंत मोतेंग, आपको याद है ना, दैट रेगन अख्तक सैसून, दी फ्रेदिगे नाख, एन एलक वर्ड फॉन यू, एक हेरेनर मे फॉन अलस, भोली नानी हो
1: रहती थी ना
0: रोमियो दुंके।

कल जुग तेरा दोहा है दोहाई। ये दविंदर सिंह शिवनाथ ने हमको सुना दी है। कसम है तुम्हें कि कसम है तुम्हें, तुम अगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक, रहे सांस जब तक ये बंधन ना टूटे। तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, तुम्हें दिल दे दिया है ये वादा भी किया है। सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,

दोनों दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। जाने खेल न बाजी, खेल न बाजी मैं हरा दूंगी,

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी अदाब, सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी और प्यार

जी के भी खरोद मुदर के भी हम नानी नानी है के आजी है मखरोद मुदर के भी पैसा चुराई से गए लुंडवा फिरतीन यारख और सोना ओना जितना है एगो नीखन तीन यारख पी एस के उ बेद देशे एन ओब्रेंस आंस एन एकन आउटो बस्तीद बेद फरदाखतन से निन फरसेकरें गस्तेल भाई ते इस अब देखो बरों फीस ओतो खातीन नानी आजी मैया के पैसा सब इसब चोरी कर कर और जाए के बेद देवे है मौसी अपन पैसा जोर से मैया लुकवाई के धल रही है श्री नाम के बात है तो यहाँ बतावे सिपाही पकड़ के बंद करी से नतील और बोले खेल बदरख एन खौद सिरान से वेकन उमर सिरान एन हाद इमोशनील वार्द फरहान मुदर एन हर खरोद मुदर और 14 बरिस मुस अफस्तान फन ब्रोंफिस इन से बसित करेगन और 19 यारग दी फरकोख्त सिरान मा गब्रुक दे खेल फॉर सेन एगन ऑटो सोनवा नवा बेच के पैसा अपरे लेके अपन ऑटो में उन्हें इस बरिस के लुंडा और ओके खबर है कल रहा नानी ऐसे बात है। अब देखो एक औरत के सिपाही श्री नाम में पकड़ी से भैया और के पकड़ी से ऑफ डीलिंग फ्रॉड 9 सितंबर के पकड़ी से को औरत जात के जेके बोले आजी ओकर नाम है ई फॉर द स्टर कर ले रहा भैया पैसा द ओके जैसे हम पकड़ी से तब बोले है गा दुई गो अफसोन लग अन खिफ्तन कर ऊपर भइल है बोले फॉर लोपक ऑन द सुक इस कब्लीकन दैट बना देल MKNP फिया आसी दी नाम अनसुख नाम द कास खल सिस्टम सर नाम में तू जाने कास चले भैया ओम दत अन में पैसा ढे नास बार कर पावे सेल्फ स्टैंडर्ड ते 5 मिला रही तो बोली हर महीना तुलो मान लिया जाए 100 रुपया ऊपर धरियो तो जेकर जेकर बेड़त आए ओइसे ओइसे पैसा बटा है तो अब जेकर बेड़त आए ले पैसा पावे को पैसे न पैसा एक मिला रहे है जे पैसा धरे है सो का नाम कास खल सिस्टम है कास खल बेर बहिर दूर अन tante van de verdachte volgens gemaakte afspraken zouden benadelen augustus 26 met Paisoa uw uitkeer hoe ik bepalen en betalen we gaan Aanzien de geldbedragen in Surinaamse dollar die aan de aandelen toebehoorden in ontvangst had genomen, zij zou deze bedragen echter niet aan de aangevers hebben overgedragen. तो वही बात है भैया हुआ कस मुनि सब चलावे हैं बाकी अब पैसवा जे कसवा मेरा वही पैसवा मार दे से तभी कर मारे मान खिफ्त भैले और कस मुनि अभी बताएं भैया जे अनजोन आदमी सेल्फ तंद पैसा अपने से ना स्पार कर पाइए तो उस सब कही वो इसने चलावे बोले हमारे घर में पैसवा उड़ जाए तो हम कस मुनिया 5 लाख दे दी तो 5 महीना बाद हम जीरा का अपन 500 हुआ पावे ऐसे चतुर ही पैसा भैया बाकी ऊपर ना 5 मान द पास तो पाइए 500 ओके बोले है कसमोनी तो कोशिश करियो भैया अपने से पैसा धरे के दत एकदम ही हमार फैलक मैं से मैं तू जाने चोर चपाटी भी बचाई कर रही है। अब देखो पेनिशी यार अमतनार फर्स्ट नंबर ड्राइकिंग तीन में जिस वहाँ अपने को सिपीर के भैया एगो सिपीर का करी से गा एगो तीनर के बदराई करी अपन पिस्तौल से अप के पकड़ी से गे सिपाही बोले वार बे अन खुरुप 300 हेवन बना दे मैं से जिस वापन द साखिब इन मिनस ओ फॉर द नोदक ऑफ हेप ऑफ शाल मीडिया का सोरा हम एक के क्लिक सोशल मीडिया पे भैया और बोले फॉलोअर verklaring van een familielid bevond een van de tieners zich in de avonduren bij de inrit van die woning. Hij zou daar samen met de vrienden op zijn mobiele telefoon een spel hebben gespeeld. De ik had door die pus op mobiele spel geletra. Op bole familie kreeg op een gegeven moment een telefoontje met de mededeling ki i jongeren jonega uka bole hege go sipir ka onder schot zouden worden gehouden. Op bole volgens het helaas had de sipier de jongeren aangesproken omdat zij volgens hem de openbare orde zouden verstoren. De tiener zou daarop hebben aangegeven dat hij geen overlast veroorzaakte. Obole sipier was reed volgende verklaring vervolgens weg, maar keerde enkele minuten later terug met zijn pistool in hand. De ambtenaren zou zich daarbij niet hebben gelegitimeerd. Volgens de familielid spande hij vervolgens het wapen en loste hij een schot. Daarna zou hij de dienstwapen op de tiener hebben gericht en hen hebben gesommerd op grond te gaan liggen.
de familieleden. Ik er bij me, telefoontje naar locatie kwam. De ito si pahina hai, legitimeer bina kalera. Op een pistool is zo lekhaike. Aurus larkon ke, jane tiranon ke. Moeilijk karat raat, dosto, hum aap log ko ek geet sunate hai. Uske bare me, hum aan jayenge, dilbar, dilbar, dilbar.

दिलबर के बाद हम फिर आ गए हैं हमारे दोस्तों। तो असाद भैया सूरीनाम में पिस्तौल वाला बहुत ज्यादा हो गए भाई, और मिस ब्रेक भी करे हमारी जनता, मिस ब्रेक करे इसे इनकी उस सबके ये पिस्तौल है, तो सोचे हमसे बड़का कोई ना बिसी पीर के बारे में सुन ले हो। तो अब देखो एगो बोंस खबाऊ है, एगो बोंस खबाऊ है, और ये बोंस खबाऊ कहाँ है? ये बोंस खबाऊ है भैया ओ का नाम बा ओ वी ओ एस बोंस खबाऊ हुआ पे फरमुदलक भैया बोंस खबाऊआ में रोफ भैल है दाख के रात के वैरक नहीं मर्स और खानी सांसी जो श्री नाम कहेगा फान ओखम ओखम वैरक नहीं मर्स और खानी सांसी श्री नाम के जो द्रम्बरांद्र स्वाख्त में है परमारिबो में वहां पे एक आदमी चोटाई गया है भैया। यहां बतावे गए हैगा बस्तूर पर किसिंग रहा ओ वी ओ एस में जहां पे फक और खानी सांसी हैगा एनर्जी बद्राइव श्री नाम के 11 तारीख सितंबर के बातचीत है। और बोले एरिस फोरास नो खेन फरमान बकेंट से स्किट इंसिडेंट एंड फॉर किसिंग अब जाने बॉन्ड की फरकीसिंग के बारे में एक मेला चुटाई गए हुआ दागी से हमारी जनता। तो ये बात है बाकी तो के लगे हम जाए ला भैया भूपा चल गए है लांटी में काम करे कर मुंह बहुत कमती खोले है जाने हरदम बोले एन एन श्री नाम एट एन दान रेस। अब पाकी तो भैया एकदम मुंह में उकर पलाक बांध लग गए यास दास पहिर के चले है। अब जाए कहीं मुंह कोली से भैया पाकी तो बोले है तुलन जाने एबीएस बोली से गा जो हुआ के एबीएस लियो ब्रिंसवेग डायरेक्टर है बोले लांटी जो है दे ना बोले बहुत अख्तर स्थान थेगा हम लोग के पैसा भरे के लांटी पैसे ना भरे बहुत ढेर कर्जा है लांटी दे ना खबाऊ के बारे में बोले पैसवा हमार कब भरिए मतलब के हम लोग के एबीएस के बारे में। तो एक बारे में पक्की तो गए है मुंह खोले जाने का बोले है नानी एंड पे स्टेफानो पक्की तो बीर फैल बोले रे आखिर करी से बोले ऑफ द डिस्क्रिप्शन अश्विन अधीन और लियो ब्रेंसिक ओवर द इलेक्ट्रिसिटी रीगनिंग फंड दिए ना बोले द टॉप मान फन ईबीएस से इन द इंटरव्यू बोले क्रिटिक बोले से दिया ना के पार्लियामेंटारियंस के बोले मिसमैनेजमेंट हैगा एनर्जी बद्राइव इस मुद्दा खान के दिया ना से एकन बतालिंस वर्पलेखनी थी खान ओवर द ईबीएस ना कोम और बोले है क्या देना मिर्द्र खबावन है एन खरोट आंताल इरको सिस्टीम बा अंतर्वे स्प्राक सौ सेन फर अख्तस्ताल बताली फन एबीएस अधीन स्प्राक दे तेखन और काम बोले एकर बारे पक्कतो बोले है पक्कितो बोले है हेत गवेल्डिग टू फिंडन दैट ब्रिंसवेग सेन उस्प्राक हेव गदान एन दैट हे जुइस्ट फन द लीडिंग फन द पार्लियामेंट हर फरवा दैट दिट गेडोक्यूमेंटेर्ड मेट बेवाइजन द बेवेरिंगन फन द एबीएस टॉपमैन सौ तेखन स्प्रेकन। तो बतावे है पक्की तो अब जाए के पक्की तो मुंह खोली से भैया बोले ब्रिंसवेग के लिए ब्रिंसवेग के लेती अब देखो निकेरी की ओर जाए खेतिहर लोन के भैया पैसा ना मिलल है पैसा ना मिलल है अब एक बारे में देना देना ले जो है रघुनंदन एक बारे में रखे रिंग से बोले गो स्पूत ऑन सुख करवाओ हमार खेतिहर के बोले अब पैसा ना रहेगे फोलखंड सही सुन में धान चीटे के बोले हैगा पैसा उस अपना पावे हैगा अख्तरस्ताल के बोले उस सबके चाहे तेल कीने के मशीन से आरबेस क्रख्तन कम करतन के भरे के और बोले वनेर फोलखंस फॉर फोलखंस यारन लंग बरीसन से बोले लीफर करिस इस सब धान बोले कान लंग बोर फोलखंस हैं फिनेंशियल फॉर लीड क्लेम को मंत जेतन सब के ना बाकी ढेर पैसा ना पाइसे बोले लीफरांसीस बंकन एंड अंडरस्कुल एट्स मुदत इमर्स नेचुरली बताल फॉर द मेंस और
deze pensioen naar Pauwe Heer. Hij wil juist dat wordt gekeken naar de gevallen waar er achterstanden zich meerdere seizoenen hebben opgestapeld. Ketra dienstjes op pensioen naar Pauwe Heer. Regune Nenbole Heer. Dat wordt onderzocht of betrokken werk, verwerker zich aan de geldende wet en regelgevens houden. Je verwerker dan waar onze pensioen naar deze wanneer zou blijken dat de onderneming structureel hun verplichtingen niet na. Komen mensen. Toen hamara khetiyar nikiri ke chaur ke baare mein hiya bataye gaye bhaiya Nederland ke duane ka pakdi se nani bara haat lage bole ma batave ke pare hai bhaiya pinda mein crack in pindas uit Suriname duane ma ka pai se nani kon ji pai se bhaiya Nederlandse duane crack aangetroffen in pinda crack bhai een woordvoerder bevestigde ik er baare mein obole hai ga. En de fonds werd met de woordspelling bekendgemaakt. Douaniers zouden tijdens de controle heel verslavende pinda's hebben aangetroffen. De drugs waren volgens de mededeling creatief verborgen, maar vormden voor de medewerker geen lastige zaak om te cracken. De aangetroffen drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Ja, en hier betaal ik na kali crack met pawe he, kukahi met pawe, bhaiya, kalabu met pawe, palam met pawe, jurmachiri met pawe he, faroktu met pawe he, kersbrood met pawe he, aansienwala, surgoot met pawe, goed met pawe, nariyar met pawe, pinda sambal met popcorn met jurmachiri met, bapre bap, aur kaan bole he, biete हुए दिनों में इस पाई से भैया बंबू में फ्लैश डेट में बलादर में पत्ता में पाई से भैया ढोलक हारमोनिया में पाई से वीरोग में पाई से भाई का होए भाई धनी होए खांती नदमी इतना जबर है दुर्ग्स के बारे में हिया से हुआ पठावे हे नीदरलैंड भाई अब देखो एगो बवाकर द्रियन फेव तक यार के सुरीनाम देश में पकड़े रहा पकड़ान है ना बवाकरवा चोर के पकड़ी से सिपाही बवाकरवा के पकड़ी से भैया एगो सेशन देर तक यार के औरत के इब फैले के आदमी फरकराख कर ले रहा verdenking voor verkrachting van een 36-jarige vrouw en ik heb het aanwezig Iedemier aan Bawakara Centrale Hoofdstembureau van de Friedrich Derby Straat Suriname ke jahan pe kabule hega stembureau hai centrale hua pe Bawakara 5 tarikh september be bhaiya apan kaam pe bole hega voorgenaan op de werkplek we pe bhai de vrouw deed aangifte op een onderzoek in kader van een onderzoek werd de bewaker natuurlijk aangehouden te komen we pe bhaiya jahan pe oke chahi bewaker ke hue pe jai ke aur farkrakh kar de bhaiya ye baat hai jhamara Suriname ke jo shikari lone bhaiya jab dekho tadikyo shishan मीडिया पे बंदूक लेके जा है जंगल में ई डांगे ऊ डांगे है स्पॉट करे आदमी लोन याने अपन फांसी सब कोई खनित करे है लेकिन फोर्स एक तक रही भैया तपाना होनी में तपाना होनी के बात है भैया जहां पे जगहिया के को दुरपुक नाबा गोदो गोदो होलो भैया गोदो ओलो बोफन तपाना तपाना होनी खबीत में बा तब भैया शिकारी लोन गए लहा पिंगो दागे अपरे में दगा उवल कल्ली से भाई पिंगो के झटका में हिया बतावे हेगा गए लहा पिंगो दागे भैया और ओही करमिया ओके दाग के मार ढाड़ी सोजे पिंगो दगली भाई द त्वे वारन है बॉस्किन खखान ओम पिंगो स्त याखन तेदन याख schoot in van hen met een jacht weer aan de jachtgeweer de ander raakte ook in legal he op over de precieze toedracht en de identiteit van de slachtoffers zijn nog niet de pingo ke jhatka me op een mede jachtgeweer ke daakke en maandhaari se dosto i bari dukke bar bari jabar aise lemua phino bhaiya fartraak kare legal janta bahut dukh me bhaai jeon jeon janta aur piwai nikh nikh
फिर SLM पे उड़ल और सबके बड़ी दुख फेसबुक पे भी आदमी बोले हैगा, बोले हमने से SLM कम्युनिकेट ना करे है, तो बोले एक घंटा बात उड़ी तो दुई घंटा बात हुई तो कब उड़ी तो फिर उड़बे ना करे है, बोले वैसे ही लमा सत में SLM से SLM फ्लिक जो ना पी वाई नी खनी खफीर अम्स्टरनार अम्स्टरदाम आवत ही लमा का बोले अनुलेर हो गए है और बोले नहीं खा सितंबर के बोले टेक्निक से प्रॉब्लम है, बोले पाशा सीज वारन आल इंच चेक फॉर फ्रैक 8 बजे इसे बोले उड़त भैया तू स्टेल एयरबस आदरी फिर तक जोन बा स्काई केयर के बोले हैगा बुधवार के अम्स्टरडाम आवर फॉल्स है गदिल्ड फ्लुक्ट ओवर सिक लैंडर द फ्लुक्ट आल फ्लुक in Paramaribo in de avond zou het weer naar Nederland vertrekken. In Tsjech reizigers waren nog niet aan boord op het plein met naar Buitenlanden in Tsjech Kertjokala. Wat er precies met het vliegtuig aan de hand is en hoeveel tijd nodig is om het probleem te verhelpen is niet bekendgemaakt mensen. Ook is er ook geen nieuwe vertrekmoment aangekondigd door Surinaamse vliegmaatschappij. De Admiloon Bhaya Apanjon Jurma Chiriyo Chiri Leke Jatra. तो झूर रह गए मैं जो आदमी फ्रीसर ईसर के चीज लेके जात रहा उस सब आदमी के चाहिए फिन लौट के आवे के भैया एगो तीनर भाई सुरीनाम देश में खेलत रहा स्पेल टाइम लगे रहा एक चार मर्दाना ओके बरूफ करी से भैया एगो तीनर के ब्रोम फिश से बरूफ करी सेगा तीनर के ओई बोले एगो स्पेल टाइम रहा लीली दरप वेख में सुरीनाम में और बोले हैगा ओके ब्रोमफिशर में सुरीनाम ब्रूफ और ब्रोमफिशर को ब्रोमफिश वो चुरा ले गए हैं और बोले 1700 ऐसा दिल लंडवा के पास रहा वो लेके चल गए हैं तीन अरवा भैया वारे में द स्पील तो आने ऑन स्पॉट टू द फरदाख्तन अब टू ही ब्रोमफिशर को आमन आन रहेन Op de volgende slachtoffer waren de mannen niet gemaskerd en droeg geen van hem een vuurwapen. Een van de slachtoffers, een 16-jarige jongen, verklaarde tegenover de politie. Kies op een bedrijf, krisis en tras zou leken. Brom leken bhaggehe, leedorp kisipahi. Onderzoekeren en leken gele brandsoep weg met ghusel. Hemari, jenta, je baantjeet hem. अब देखो भैया हो खाद के तुलन जानो भैया अरे भैया बड़का NDP रहा एक दाई सोशल मीडिया पे गिर गया रहा और सब कोई एक नाम धरी से मने दरा से था ढेर आदमी के ऐसे बोले हैं बैतल आंदेश के बकड़ा बाची ही करे अब देखो हो खाद 12 दिन से कुछ ना सुना रहा अब हो खाद के भी अब मुआ कूले ले बोले दे मांग नो सब तक वे पीना बोले आदमी न जाने है कि हम लोग पीना करी लगा लूज फॉर हुकिंग 50% जो मां लंस दिनान तू तो कहने बतीकन फॉल्कंस रोनाल हो खार जो फक बोंस लेदर है बोले हैगा दैट मैन नीड ना रेड फॉल केक है स्टिल सिक आफ्टर फ्राग एंड आफ्टर रेगिंग नीड वे द लंस दिनान पीनारन इन हेड लंग भैया मैं तो हूं तो बड़का NDP ही बाटे और तो हूं तो बाटे रेगिंग के बड़कवा और अपने आप के बोलिए सा एफ सा इना कुंद्रे दे मांग नो साबित तक वे पीना वन अपि दे ना में ना बैठल भैया तब बहरे सब जरूर अब चिरैया गाना गाई दन कई करनी मान निन्ना रेड फॉलर से कई करनार वट से विन दून दिस वट एर मेट ओंस गबेर द पॉलिटिक हीव दा निस में ते माकन आल समाज सिक सेल्फ रैकन से हो हार्ड बोली से और उही के पार्टी के आदमी तो आज बैठल है अब देख उही के बोले हैगा कावल हो हार्ड ई आउट पूरा पुराना NDP'er parlementariër raha, hoewel president Jennifer Simon aangeeft dat er momenteel geen financiële ruimte is om een hogere loonsverhoging dan 15% toe te kennen voor de landsmensen, landsdienaren. Tegen bole, naar de kemlo ketra pina karela, bole, inomal lekwans ma dino abi yang uit tak ano mus yang. Dus ik scheld de president niet uit, want ze heeft rommel overgenomen. Dus ze doet haar best al, dus een vakbondsleider. Janne gatai kaart ke tel laga de ki na pirato. Apoke na deze santoki ke deze bole tu rommel overlele. Maar joon se me pefe ha pe eke overlera, tap konche ra bhaiya, khali sona. Over Leraka, ja. Tot de regering en vakbeweging zijn overeengekomen om een gemengde werkgroep in te stellen bestaande uit 8 vertegenwoordigers. Gebaren mee. To
हमारी जनता हो खार्त के बांचित रहा सूरीनाम के बारे में। अब देखो भैया जाए लगो सुपर मार्क सूरीनाम में चार आदमी अपन मुंह तोप के भैया मास्कर पहन के घुसल है वेस्टर्न फन सूरीनाम और बोले एगो वाख्तर के पकड़ के रात के सोमवार के और मंगल के रात के चार गो मास्कर पहन के ऊपर मिस्टर करके हाथ गोड़ बांध के सुताए रहा भाई और जाए के दुकनिया में वो उनिंग एन सुपर मार्क एन पांच में जाए के घुस गए है। द पुलिस तरफ द वक्त लातर फर्स्ट खबर ऑन द अख्तर बालकोन में होके बांध दे रहा। चार बजे सवेरे के बात है और बोलेगा तुम सुपर मार्क आई खाना शोंग से एक बेड पुलिस ब्यूरो निकेरी मेल तो निकेरी के बात है फरक्लार करे के वक्त रोम हेल्प हाथ हो रहे रूपर ने फरमूड दर इस एरेस्ट का न हाथ वास फोल्क द फरक्लारिंग फन वक्त रहा ने द फिर मान एंड हिम एक बजे रात के फर्रास करिस ओवर मिस्टर करिस है फोर्सियर ने दाना राम एंड ड्रोंगन फिया द ऑन स्टैंड ओपनिंग द वॉर्निंग बिनन अब सुक ना द वार द फॉर स्पिलन और बताए गए है सुपर मार्क वर्ड break werd doorzocht de eigenaar en zijn gezin bevinden zich momenteel allemaal in Paramaribo. Bolle, het is vooralsnog onbekend wat de daders hebben meegenomen. Op de Nikeri rivier naar het pand en verlieten ze zijn locatie naar dezelfde route Suriname. Toen je maand hebben, ja, wacht er weken pakkerke banker deze gaan. Je maand heb deko, 10 mila ke pakkerse Kashmir straat mee in val van de woning. Hier betaal je hega Cuba ke ouderen hega onder wie tuigo Cubaanse op maar एगो एडमिशन नाम के 8 तारीख सितंबर के आनखाउद कैसे का कश्मीर स्थान परमारीबो में बोले द एक्सी वेट आउटफोर द मीडिया वर्कर्स सिपाही के टेप पायरा अंडरस्टैंडिंग फॉर एन रीह्यू एन रीह्यू बेस्टन टीम परमारीबो के बतावे गए फर्मुलर स्लाक्टऑफर फन इज अ मेंसा हैंडल करत रहा ए मेंसन स्मोकल करत रहा। Tijdens de inval werden meerdere slachtoffers aangetroffen. Zij zijn voor opvang en verdere begeleiding overgebracht naar de shelter van de afdeling. Tipke waren met ons tot de ijsje wat ja, hey. Hem zo chitelukke hem ego or giet sunaide. To vier hem aanjaenge. और वो कौन सी गीत है हमारे यारे यारो हमारी जनता दारू पी के डांस के बारे में।

और दोस्तों आज कुछ चटनी सोका हम चलाएंगे, कुछ गयाना क्या और कुछ सुरीनाम के भी चटनी चलाएंगे, और यानी कि त्रिनिदाद के बाद हम चलते हैं कविता राम किशुन।

0: gefeliciteerd.
1: दोस्तों विकारी सिंह का ये है ये गीत हमारे यारो। उसके बाद में हम जाते हैं और आगे को, और वो है पर्वत पांचू की ओर।

अरे क्या हुआ तेरा वादा, पर्वत पंचू ने इस गीत को गाया है दोस्तों, गाया है। और आज कुछ चटनी हॉट सॉन्ग आपको सुनाएंगे। En na de chutney komt er nog eentje van Kenneth Schalik, chutney chocolade.

और पारी करो और पारी करो के बाद में हम चलते हैं विदेश शाम की ओर।

0: चांदनी बरसात की ओर, ये गीता मेरे महबूब के बाद तो हम चलते हैं दोस्तों कुछ छयाना सोका सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं। आप जानते हैं रेडियो फाहुन के पास ऑल सेफ्टी इन हाउस, और जो भी आप चाहो यहां पे आप सुन सकते हैं शेकी बेबी एंड शेकी।
1: So come in front this stage, girl, and shake it, let me see.
2: Get up, get up.
1: Shake it, baby, shake it.

और खेतवा में हो गई लहरिया, गुलरी के फूल से आज हम अपना प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। आज को ये घंटा आपको हम झुमाएंगे, नचाएंगे, सजाएंगे, कुछ रीमेक्स बैठे गाने से आप लोग की सेवा आज हम करेंगे। जॉनी है हमारा नाम।

ले लो ले लो रे सजना, और नाचो नाचो रे सजनी, नाचो नाचो रे सजनी, और नाचो नाचो रे सजना। आज आप लोग को हम एक घंटा करीब कुछ हॉट वॉन बैठक गाना रिमिक्स, कुछ फिल्मी रिमिक्स हम सुनाएंगे आपके दोस्तों। और दोस्तों कुछ चटनी सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं, ऐसा लगता है और क्या लगता है, आप खुद ही सुनिए।

और चाहे आज मुझे ना पसंद करो, और चाहे कवाड़ी बंद करो, और चाहे दरवाजा बंद करो। दोस्तों आज कुछ रीमिक्स सॉन्ग्स से आज हम आप लोग को जेवा करेंगे। हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर।

दोस्तों 70 का हिंदी मशूक और उसके बाद हम चलते हैं इक्ष गुप्ता नहीं है नहीं इस छुपता नहीं है सुजल उमराव का ये जोंग है। इस वक्त ये नौजवान जो है और ये नौजवान बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं दोस्तों।

और तस्वीर नहीं, तस्वीर नहीं बनती दोस्तों। और ये सब नौजवानों का यंगर सॉन्ग है। और हम चलते हैं उसके बाद जाते हैं, और वो है लेडी लेडी एंड लेडी संजना की ओर। आओ मिलकर और झूमे नाचे और प्रोडक्शन बे ज्वाला चटनी माशूब।

और हिलाओ जोर से हिलाओ, जोर जोर से हिलाओ। तब तो बलवा बोली धीरे धीरे ना जोर जोर हिलाओ, उसके बाद हम और एक चटनी की ओर जाते ही आओ सुना जाए। ये भी एक हॉट वन है।

और ऐसा चतुर मोरे भौजाई रे, और जब भौजाई चतुर है तो देवरवासी जरूर माने लगेगा। तो हम चलते हैं नीले गगन पर। तो नीले गगन पर क्या होता है, झूमो जाए।

और नीले गगन सी और चले तो नीले गगन के बाद हम चलते हैं और एक हाथ होन अंद्रियाना ठाकुर और दिन ओ शिका शिका नहीं ओ

और सिखा नहीं, सबक तूने प्यार का तो और क्या होगा भैया। उसके बाद चाहते हैं तेरी मेरी गल बन गया है।

0: और तेरी मेरी गल बन गई है हमारी यारो। तो अगला गीत चलते हैं कविता राम की सुन पायलिया। ओहो चलो हम बीच सामा डांस
1: झनकार
0: लाओ बीच स्विंग स्विंग।

और चौधनी का चांद के बाद हम जाते हैं राकेश जयकरण के बाद हम जाते हैं अपना सूरीनामी राजेश शिवनंदन।

और दोस्तों हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं। और हमारे यारो आज कुछ डिस्को जोन होगा, तो हम दोस्तों एक आउट चला जाए अनिल भीम की ओर।

मोर हमारी यारो गुलाबी आंखें जो है, ये मॉरीशियस के लोग की इस तरह से गाते हैं। तो हम आज आप लोग को सुनाते हैं, हम चलते हैं उमेश महावीर की ओर और वो भी कुछ सुनाएंगे। और तितल है मितवा।

और मितवा उमेश मोहाबीर का ये सॉन्ग। उसके बाद हम चलते हैं कुछ लोकल सॉन्ग हम आपको भी सुनाएंगे हमारे सुनने वालों, और ये लोकल सॉन्ग हम मॉरिशस के आप लोग को हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं संजीव भुलाओ तोर हमार लंबूर।

और तू हमारा दिलवा चोर की नचिए हमारे यारो। तो दोस्तों जैसे बताए गए हैं हम चलते हैं अगला गीत के ओर, वो है कैनज सालिक के ओर हम चलते हैं। एगो चटनी सोका लेकर ये आते हैं। और बोले स्टॉप ड्रिंकिंग और क्या क्या भैया, हमें गीत की जरूरी है।

0: ही हो जाएगी।
1: और तुके दिखली हम तो बोले हम बहुत खुशी हुई गई ली। तो ये सब भोजपुरी सॉन्ग हम आप लोग को रेडियो फाहुन के माध्यम से सुनाते हैं हमारे यारो। उसके बाद में हम और एक लेकर चलती है, ये कामना के कोनो गीत है भैया, आओ मिलकर सुना जाए।

जो आम को हम सुनाते हैं वो सिर्फ रेडियो फाहुन के माध्यम से सुनते दोस्तों। हम अगला गीत की ओर चलते हैं, वो भी एक भोजपुरी सॉन्ग है मॉरिशियस का।

और ओ कर बुलबुल के, ओ कर पारो के, और ओ कर सबके कौन बालमा ओके भरमावे है। हमारे यारो, तो ये गीत आपको हमने सुनाया है, तो उसके बालमा के यानी पारो के कौन बालमा भरमावे है। तो अब हम चलते हैं अगला ओ बालमा की ओर।

अपने बलमान से मांगे हैं, तो बलमान बोले हम जब ना लावे तो दूसरे दुल्हनिया ले आवे, तो औरतिया बोले नहीं बलमान हम ही के तू ले ले। तो ये सब गीत आपको सुनने को मिलता है भोजपुरी जोंग से। दोस्तों एक और हम आपको सुनाते हैं।

और क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर तुम लगती हो, के बाद समझाते हैं कि मेरे नसीब में क्या है यारो।

और मेरे नसीब में तू है ते नहीं। दोस्तों कुछ रिमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को भी सुनाएंगे, ओल्ड एंड गोल्ड रिमेक्स में कैसे लोग गाए हैं और मिसी को बजाए हैं, तो हम और अगला गीत की ओर चलते हैं।

0: इटावा, पुष्पेंद्र इटावा, पुष्पेंद्र इटावा, पुष्पेंद्र इटावा।
1: और दोस्तों रीमेक सॉन्ग के मूड में आज है, तो हम चलते हैं। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, और यो अरे भैया तू तू है वही जो वही दिल से जिसे अपना कहा। तो ये गीत तो हम प्लेयर पे रख चुके थे, लेकिन अब पता है कि कुछ और चलेंगे। जैसे हमने यहाँ देखते हैं कि ये गीत में कुछ तरी से कुछ आ गया है, लेकिन हम जहाँ काम होता है वहाँ तो कुछ होता है। सुना जाए।
2: 02264008955।
3: हेलो,
2: अकेले हो, दोस्ती करोगी?

वही दिल ने जिसे अपना कहा। हमारे यारो और कुछ रीमेक सॉन्ग आप लोग को ये घंटा हम सुनाएंगे। तो यारो इसके बाद हम चलते हैं एक और दिए यानी कि रीमेक सॉन्ग की ओर।

0: बाजार ठाणी बाजार
1: और उड़ ही उड़ के जनचियो तो माँ कुछ और मजा है कि सजना है मुझे।

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं पर ये

औरी जो भी हो दोस्तों, आंची आपको झुमाएंगे और नचाएंगे भी हम और जगाएंगे भी हम।

कांटा लग गया भैया और जल्लाटा लग गया है, चुभ गया है, तो वो पीरा भी बहुत ही जोर से देगा और जो खून निकल गया तो और ज्यादा हो जाएंगे। आम को हम यानी कि करीब एक घंटा कुछ बॉलीवुड ओल्ड एंड रीमेक सॉन्ग से आपको सेवा किया है। हमें आशा है, उम्मीद है कि आपको हमारा रीमेक सॉन्ग पसंद आया होगा।

कौन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। Natuurlijk te beluisteren via internet के लहरों द्वारा fahunfm.nl पर ये कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, नतीलक आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। ऑफ कोर्स है नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत है लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो दंत आल्टाइट नार जली एंड वो सर्ग हीर नतीलक एल्क दाग 24 आवर्स फॉर लाइक म्यूजिक इंफॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, या तो आप अपने व्यापारी के बारे में कमर्शियल बनवा कर, या जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है कि कुछ हो सकता है ना। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। कि फाइव सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बैंस ऑफ द एस्ट प्लांट। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंक अनाउंस डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी बेल ऑफ मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 यूर मॉर्निंग्स टू 5 यूर मिडनाइट्स ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स। कंटोर 070-362-2047 en studio 070-362-2077. Jo bhi radio ka kaam ho, denk aan Fahun Hindustani Radio. U bent van harte welkom. इसी तरह हम लोग के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हम लोगों का फुल टीम की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया। बेंट नोख इन लेट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने। और अगर हो सके तो कोशिश करना औरों को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। तो आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने, औरों को भी बनाए ना। हाँ, सभी जानकारी न्यूज़ करें। एक दम लेकर चलते हैं हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का, मिस्टर इंडियन पॉप म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक। और लाते हैं आप सभी के सेवा में हमारे हॉलैंडेश का जबरदस्त गायक मैस्ट्रो शेखर कुमार, और वो सुनाते हैं आप सभी को मेरे सामने वाले।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को मास्टर शेखर कुमार और साथ दे रहा था रंजय राकेश अंत राहुल। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है अगला बयान चांद मेरा दिल और एक जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का मास्टर बॉबी।

सुंदर बयान श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया और सुनाने वाला था मैस्त्रो बॉबी याकॉब। अगला बयान एक और मशहूर गाने वाला आईडीआर 80-90, बहुत ही कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए मैस्त्रो सुभाष शिव प्रसाद का ये अति सुंदर बयान जो बहुत ही मशहूर हुआ था हमारे हॉलैंड देश और सूरीनाम देश में कि आजकल भी लोग गाते रहते हैं कि, लेकिन लिखने वाला और बनाने वाला ये नगमा का था, लिखा था वो सुभाष शिव प्रसाद जी का बहन राधा शिव प्रसाद जी ने ये अति सुंदर बयान को लिखी है और कंपोज किया है बड़ा भाई मैस्त्रो जैन शेखर शिव प्रसाद। इस भाई बहन का प्यार इस नगमा में आप जरूर सुनेंगे और मैस्त्रो रकीब वाहिद हुसैन जी का कमाल सुनिए ढोलक पे। मैस्त्रो सुभाष शिव प्रसाद, रेस्ट इन पीस उन्हीं के याद में।

Shabash, Giorgiste Gaik uit de jaren 80-90, maestro Subhas Shiv Prasad, rest in peace, music by the strangers. Kya baat hai, agla bayan ki taraf badhte hai, aur mera hi awaaz mein aap ye ati sundar bayan ko sunenge. और अगर आप मुझ से सुनिए तो दर्द कुपले तो आई गनवा के हम अपने से लिख रही बात ऐसा न भाई लाज हम लोग गए रही गनवा अप लेवे स्टूडियो में तो म्यूजिक डायरेक्टर मास्टरो जेम शिव प्रसाद ने 3 कुपलेत बनाए इस गनवा मां गनवा ओरिजिनल 2 कुपलेत है तो सब के दुकान प्रिंस खराख स्विमर गार्डन में मैं बैठ के उसी दिन ये दर्द कुपलेत को लिखा बैठाया और गा दिया तो सुनिए मेरे ही आवाज में गोरी बुलाए दादा हेमंत कुमार के याद में म्यूजिक अरेंज अंत री अरेंज बाय मास्टरो जेम्स शेखर शिव प्रसाद स्ट्रेंजर्स ऑर्केस्ट्रा का बैंड लीडर

है मेरी ही आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। म्यूजिक रीअरेंज बाय मैस्त्रो जेम शेखर शिव प्रसाद विथ हिज स्ट्रिंगर्स ऑर्केस्ट्रा। एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे हॉलैंडिस को मैं लाता हूँ प्रोग्राम में। याद कीजिए आप निकटिन तख्तख सिलवा के माई मेफ्राउ इंदिरा रामचरण मेरी पुसली छी रैया।

बस क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त कासे को सॉन्ग स्टाइल में आप सुना और देखा जाए बहुत ही नौजवान कलाकार कुछ थे, द कॉलेज ग्रुप आईडीआर तख्त, और गाने वाली थी सिल्वा के माय, मेर बकेंट आस सिल्वा के माय ना जी लग मुफ्रो इंद्रा राम चरण जी। तो साथियों टाइम फॉर सम शेर शायरी है। अर्ज किया है यारों क्यों किस किस को दोगे दुहाई अपनी दोस्ती और मोहब्बत की, किस किस को दोगे दुहाई तू अपनी दोस्ती और मोहब्बत की, यहाँ तुम्हारी सुनने वाले बहुत है पर समझने वाले कोई नहीं। The two most dangerous weapons in the world other than nuclear bombs are one, a girl's smile, two, a girl's tears. पुराने रबतों को फिर नए वादे की ख्वाहिश है यारो, पुराने रबतों को फिर नए वादे की ख्वाहिश है, जरा एक बार फिर कह दो मोहब्बत मर नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती। याद आए जो तुम हमको अभी दिल में हुई हलचल तभी, याद आई जो तुम हमको अभी दिल में हुई हलचल तभी, लफ्जों को थाम लिया जुबान ने, लफ्जों को तो थाम लिया जुबान ने, हाय कहना है कुछ तुमसे लेकिन फिर भी कभी। दर्द की हर हद से अब गुजर गया हूँ मैं, दर्द की हर हद से अब गुजर गया हूँ मैं, फिर कभी ना सिमटूंगा यूं बिखर गया हूँ मैं। कितना मुश्किल है जिंदगी का ये सफर, कितना मुश्किल है ये जिंदगी का ये सफर, खुदा ने मरना हराम किया, खुदा ने मरना हराम किया और लोगों ने जीना हराम किया। ये थे कुछ शेर आगे के कार्यक्रम में, कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। एक और जबरदस्त गायक जो बहुत ही कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए, मैस्त्रो शहीद वाहिद हुसैन, म्यूजिक अरेंज बाय छोटा भैया उनका, मैस्त्रो शारीफ वाहिद हुसैन, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।

Beautiful song by maestro Shahid Wahid Hussein. अगला बयान एक मशहूर गाने वाले जो बहुत ही कम उम्र में हम लोगों को भी छोड़ के भगवान को प्यारे हो गई थी, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट अबीदा कोए राय शाह रामजान जी को लाते हैं प्रोग्राम में। उस जमाने का मशहूर गाने वाली नाइटिंगेल थी वो, और उसी के ब्यूटीफुल आवाज में, उन्हीं के याद में ये थी सुंदर बयान तुम्हें अपना बनाने की।

Beautiful song, Mansoor Ghanewali from the 70s, 80s. Rest in peace, Abida Quraisha Ramjan. आज का इस सरनामी संगीत दूसरा भाग में जो आप सुन रहे हैं, आखिरी बयान आप सुनेंगे एक और महान गायक हमारे हॉलैंडीज का, एडियार 70-80-90 मैस्ट्रो नदीम खान, अप्स एंड बेस्ट, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन ही बीत गया, शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान किशोरदा का गाया हुआ है सुपरहिट सॉन्ग नदीम खान जी के याद में और उन्हीं के आवाज में।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है, वंडरफुल सॉन्ग, समझने वाला का ये अति सुंदर बयान है, शिक्षा और सबक से भरा हुआ, सुनाया आप सभी को मैस्ट्रो नदीम खान, रेस्ट इन पीस ब्रो। तो यहीं तक था आज का दूसरा भाग हमारे सरनामी संगीत का, जो समाप्त होने को आया।

0: अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत और स्टे ट्यून ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो आफ्टर द ब्रेक।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindustani Radio.

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स से जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपको फिर से एक बार स्वागतम हमारे कार्यक्रम में। अनतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड सो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स फॉर एवरीबॉडी। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से इश्तिहारे जरूरी खबरें, तो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। किफायत, सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बेउंस ऑफ द ईस्ट प्लाट्स। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेलेंस कंटोर उग्र फन मांडा तक फ्राइडे फन 9 to 5 ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स 070-36-2247 या तो स्टूडियो कतार का नंबर 070-362-2077। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो खेन लिट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है यारो। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने इसी तरह हम लोगों के बारे में बातें शाते करते रहना यारो, थोड़ा बहुत रेक्लाम बनाते रहना। इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। एक ही दम लेकर चलते हैं यारो प्रोग्राम की तरफ, और अब से आप सुनेंगे कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। एक महान गायक, उभरता हुआ कलाकार जो इतना नाम कमा चुका है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, जो कुछ साल हुए है अंदर गया था फिया इंडियन आइडल। कौन नहीं जानता है महान फनकार द ग्रेट विशाल मिश्रा जी। खुद गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं, गाते हैं और बजाते भी है यारो, क्या बात है। मल्टी टैलेंटेड कलाकार, और ये अति सुंदर बयान जो उसने गाया है मैं आप सभी को सुनाने को चाहता हूँ यारो। यहाँ कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी होने लगा, अरे बाप रे बाप, गनवे भग गए, लेकिन कोई बात नहीं, खोज के मैं धर देता हूँ। आ गया, कैसा हुआ, फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह। उन्हीं के आवाज में, उन्हीं के लिखा हुआ और उन्हीं का कंपोज किया हुआ ये अति सुंदर बयान, स्ट्रेट टू द हार्ट।

0: कैसे हुआ फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह, विशाल मिश्रा द ग्रेट आर्टिस्ट, उसी के बनाया हुआ ये मीठा धुन और लिखा है अति सुंदर बयान को मनोज मुंतशीर जी ने। अगला बयान मजेदार सॉन्ग चोली के पीछे क्या होते हैं यारो, मिल के सुनते हैं महान गायक दिलजीत दोसंझ और साथ दे रहे थे, दे रहा है आई पी सिंह, अलका याग्निक और इला अरुण। लिरिक्स है आई पी सिंह जी का और संगीत तैयार किया है अक्षय। मिल के सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग चोली के पीछे।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग।

इस मूवी में अक्षय अंत मैस्ट्रो अल्पी गाने वाले हैं दिलजीत दोसंज और आईपी सिंह अलका याग्निक इला अरुण। जबरदस्त सॉन्ग चुन के रख चुका हूं मैं प्लेयर में आप सभी के नाम पे। महान गायक एक बहुत ही जबरदस्त संगीतकार जोड़ी है, संगीत की खास करके गाने के क्षेत्रों पे पवनदीप राजन और अरुणीता कांजीलाओ का बिल्कुल नया सॉन्ग इस दिल को, और बनाया है वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर मैस्ट्रो जीत गंगुली जी। मिलके सुनते हैं।

आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया इस दिल को, क्या बात है, अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप राजन के आवाजों में। द म्यूजिक इज कंपोज बाय माएस्ट्रो जीत गंगुली। अगला बयान की तरफ जब देखता हूं तो फिल्म लकीर का ये अति सुंदर बयान, म्यूजिक बाय माएस्ट्रो ए आर रहमान और लेखक है महबूब। मिलके सुनते हैं महान गायक माएस्ट्रो शान और कविता कृष्ण मूर्ति जी की आवाजों में ये अति सुंदर बयान, पैगाम।

गाम गाने वाले शान और कविता कृष्णमूर्ति जी, महान संगीतकार ए आर रहमान के साज और अल्फाज़े है मैस्त्रो महबूब जी का। फ्रॉम द सेम मूवी लकीर नचले, और इस बार जबरदस्त गायक द किंग ऑफ द भांगड़ा सॉन्ग्स दिलेर मेहदी, अल्फाज़े है महबूब जी का।

0: है ब्यूटीफुल सॉन्ग द भांगड़ा किंग दिलेर मेहदी के ब्यूटीफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी लकीर संगीतकार ए आर रहमान के साथ। तुम्हारे यारो कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अर्ज किया है यारो कि एक लड़की मुझसे बोली आप शमार्त होके और हैंडसम होके भी सिंगल क्यों हो। एक लड़की मुझसे बोली आप स्मार्ट हैंडसम होके भी सिंगल क्यों। मैंने भी बोल दिया, मैंने भी मुस्कुरा के बोल दिया संस्कार पगली संस्कार। कैसे बयां करूं उनके अंदाजे मोहब्बत का, कैसे बयां करूं उनके अंदाजे मोहब्बत का। जालिम ने जहर भी दिया तो वो भी अपने लबों पे लगा कर और नहीं पिया। ना चाहते हुए भी आ जाते हैं लबों पे तेरा नाम, ना चाहते हुए भी आ जाता है लबों पे तेरा नाम। कभी तेरी तारीफ में तो कभी तेरी शिकायत में। एक नफरत ही है ये दुनिया चांद लम्हों में जान लाते हैं। एक नफरत ही है जो ये दुनिया में थोड़ा बहुत चांद लाते हैं कुछ लम्हों के लिए, वरना चाहत का यकीन ढलना में तो जिंदगी बीत जाते है। आखिरी शेर यारो जनता जानता हूं बहुत मशहूर हो रहे हैं मेरे अल्फाज और मेरे शायरी, जानता हूं बहुत मशहूर हो रहे हैं मेरे अल्फाज और मेरी शायरी, पर एक पगली ऐसी भी है, पर एक पगली ऐसी भी है जिसे मैं मना नहीं कर पाया और वो है हमारी तन्हाई। तो ये था कुछ शेर्स आखिरी आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। बयान सुनाने वाले हैं ऑल्सो फ्रॉम द मूवी लकीर और इस बात द प्रिंस फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. Een vrouw uit Ude is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Hulpdiensten werken nog aan de volledige identificatie van alle slachtoffers. Alarmcentrale Eurocross krijgt momenteel een enorme stroom aan telefoontjes binnen. Bij het tragisch ongeluk vielen in totaal 5 doden en 40 gewonden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. En tientallen supporters van Feyenoord krijgen een stadionverbod voor de Kuip en mogelijk heel Nederland. De voetbalclub heeft 47 personen geïdentificeerd na incidenten tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans staken tijdens het duel massaal vuurwerk af op de tribunes. Een deel van het vuurwerk belandde in het vak met de supporters van de tegenstander. 7 Cambuur-fans raakten daardoor gewond aan hun gehoor, ogen en huid. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

लता जी आपको सुनाएं अगर तुझको मोहब्बत है फिल्म आपकी परछाइयां में से है नई गिनती फिर से शस्त्र का जी आनी की थी फिर से शस्त्र का ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं एक फिल्म है फिल्म शायद आपने देखे होंगे बहुत पुरानी फिल्म है ये गीत है गाया गया है गीता राव जी के जरिए और मन्ना दे जी के जरिए ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है स्वार्थवेद फिल्म है शायद आपने देखे होंगे नाम है जग्गा डाकू जिसमें जयराज ने खेले हैं एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया लेकिन सिर्फ जयराज याद है। तो जब मैं बहुत छोटा था ये फिल्म देखे इसलिए सिर्फ जयराज याद है एक्ट्रेस नाम नहीं है क्योंकि जयराज तलवारबाजी में बहुत तेज था उन दिनों। तो लीजिए वही गीत मैं आपको सुना रहा हूँ इस तरह से आ रहा है

हाँ जी, फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर हम आपको सुनाएं गीता जी और मन्ना दे जी की आवाज़ में, जबकि आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर। ये गीत बहुत बार चला लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है। तो अगर जब मैं कहूँगा फिल्म अनपढ़ तो आपको पता चल गया होगा, लता जी भी आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल ही गया है तो चलो सुनते हैं।

आपकी नजरों ने समझा मदन मोहन। जी हाँ, मदन मोहन के साथ पर फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर नेगे 1962 का ये गीत लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम रखने वाले हैं और ये है भी एक बार लता जी, फिल्म गुलामी तो आपने देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म गुलामी में से निकाल कर ये चलता क्यों नहीं भाई? अच्छा, अगर वो नहीं चलता तो ये तो ज़रूर चलेगा।

0: कहां से।
1: वाह क्या दिव्य था रफी साहब और आशा जी की आवाज में फिल्म कश्मीर के कलीमे से निकाल कर हमने पेश की ओपन नैयर के साज पर। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है। जी हाँ रफ़ी साहब ये कह रहा है कि अगर वो आता है तो सिर्फ वक्त बिताने के लिए अमायकों की रतिंग। तो चलो सुनते हैं क्या ख्याल है रफ़ी साहब के और आशा जी की आवाज़ में फिल्म नीला आकाश में से निकाल कर 1965 का ये गीत, निगेटिव फैंस का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है, सुन लीजिएगा।

अच्छा तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। हमने कहा ना मैं कौन कीरा तेंग। बहरहाल लेकिन ये भैया ये कह रहा है कि मैं प्यार करूं या ना करूं, ये भी अभी सोच रहा है।

सोचेंगे कि तुम्हें प्यार करूं कि नहीं। कुमार सानू ने आपको सुनाई है फिल्म दीवाना में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। थोड़ी बहुत मुझे याद ये है ऋषि कपूर और दिव्या भारती की फिल्म। दिव्या भारती एक बहुत जवां उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया, हेल यंग ओवर लीड। मुझे पता नहीं कितना देखना पड़ेगा लेकिन सेज हेल यंग ओवर लीड दिव्या भारती। चलो हम आपको अब ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। जी नहीं, गीत सुनाने से पहले, जी हाँ गीत सुनाने से पहले फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये गीत सुना ही दूँ। चलिए ये गीत आपको सुना ही दूँ और वो है इस तरह से।

फिल्म पूर्णिमा में से निकाले हैं, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं 1966 का ये फिल्म, निकिता सेन शास्त्री का ये फिल्म और हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये भी लता जी, ओनली लता जी, लता जी की आवाज़ में ये धमाकादार गीत हम आपको सुनाते हैं। आपने सुने हमने कहा धमाकादार गीत, जी हाँ वास्तव में बहुत धमाकादार गीत है। ये भी 1966 का है, फिल्म आए दिन बहार के, फिल्म आए दिन बहार के में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के सांच पर। आओ ये लता की आवाज़ में इसे ध्यान से सुनिए, गीत आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आज स्पेशल सुन लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं कि गंगा चला रहा है जी नहीं, लेकिन ये गीत की धुन जो है और जिस तरह से लता जी ने ये गीत गाए हैं वाह बहुत कमाल के।

फिल्म आए दिन बहार के ये गीत हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर और लता जी की आवाज़ में टाइटल सॉन्ग आए दिन बहार के निकटिन सेशन सेस्तक का ये फिल्म। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ लता जी के साथ 1961 का फिल्म छाया में से निकाल कर।

चोरी चोरी, और ये गीत हम आपको सुनाए हैं सलील चौधरी के साज पर, मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म साजन में से 1969 का ये गीत, निकिति निकने से का ये गीत। हमने एक बार कहा था, पता नहीं कब, लेकिन एक बार फिर कह देते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फिल्मों में साज दी है, 454 फिल्मों में इन्होंने साज दी है, सबसे ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों में साज दी है। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म साजन में से ये गीत। लता जी के साथ

रेशम की डोरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर 1969 निघ्न शस्त्र का ये गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और रफ़ी साहब के आवाज़ में। रेशम की डोरी इसका सारे भी बनता है, जी हाँ रेशमी शायद सारी। चलिए तो आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो ये है माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस लता जी के साथ फिल्म ससुराल में से निकाल कर। जब ये फिल्म पहली बार चला सूरीनाम में बहुत दिन की बात है तो लोगों डर गए थे कि क्या ससुराल में ऐसा भी होता है, तो कैसा होता है सुन लीजिए।

अपनी उल्फत के जमाने का न पहरा होता। शंकर जय किशन के साथ पर ये गीत पेश हुआ ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी तत्पर है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं कि प्रेम प्यार मोहब्बत में कितने बार रोका जा रहा है, लेकिन पता नहीं कि महबूब नहीं सुनता या महबूबा नहीं सुनती है। बहरहाल आपको सुनाते हैं ये गीत। क्या हुआ पता नहीं मेरा सीडी को क्या हुआ। अच्छा चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो ये इस तरह से है।

वाह क्या बात है, ये गीत हमने चलाया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, येसुदास और लता जी आपको सुनाए। चलिए जो गीत हम चलाने वाले थे इससे पहले वही गीत हम फिर ढूंढ के और निकाले हैं और आपको अभी अब सुना रहे हैं। रफ़ी साहब आशा जी की आवाज़ में, रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, वह क्या बात है। मेरा सनम नहीं थी इन फाइव इन सस्त ओपन नैयर के सास पर

रफ़ी साहब और आयशा जी मिल के आपको सुनाएं ये गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करें इस तरह से, तो पेश करें मदन मोहन, मदन मोहन के साज पर निगति एन सैफन तक का यह गीत एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुन लीजिएगा इस तरह से। सोचिए मदन मोहन और ऐसा गीत, जी हाँ ये भी हो सकता है।

सिमटी सी शर्माए सी आपको सुनाया गया। हमने एक गीत पेश की मदन मोहन के साज पर, निकिति एन सैफ का ये गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है आशा जी की। आशा जी की ये गीत आप सुनिए। उस जमाने में जब ये गीत बना तो उस जमाने में लोग कहते थे मुजरा है, मुजरा, मुजरा से बदल कर बार का गाना हो गया, बार का गाना कैबरे हो गया, कैबरे के बाद आजकल आइटम सॉन्ग हो गया, नाम बदल गया, गाना वही रहा, लय वही रही और हाँ थोड़ी बहुत साज बदल गया और शब्दें बदल गई, लेकिन आजकल क्या कहा जा रहा है, आइटम सॉन्ग। उस जमाने में मुजरा कहा जाता था। चलो सुनते हैं।

आशा जी, वाह क्या बात है। आशा जी, आपको सुनाए हैं ये उन दिनों के गाने जो हम आप सुन रहे थे और इस पर डांस भी किए होंगे, लुत्फ उठाए होंगे हमने पेश की आशा जी की आवाज़ में। तो चलिए, पक्का मुजरा ये है जो मैं आपको अब सुनाने वाला हूँ, तो ये पक्का मुजरा है।

वाह क्या बात है, हमार कहाँ मानो राजा जी फिल्म है का नाम है दुल्हन एक रात की, ये भी है लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये फिल्म हमने नहीं देखे है। आपने देखे होंगे तो बता सकते हैं, हमने फिल्म नहीं देखे। अगर गाना तो सुने हैं और भी गाने हैं जहाँ तक मेरा ख्याल में, एक दिन ये फिल्म लेकर देखेंगे। उषा मंगेशकर और आशा भोसले दो बहनें मिलके आपको सुनाई है ये मुजरा वाला गीत। तो वही मुजरा और वही कैबरे डांस और वही वगैरह वगैरह नाम बदलते बदलते बदलते बदलते अब हो गया है आइटम सॉन्ग।

घर में अरे परदेसिया आओ पधारो, पेश परदेसिया फिल्म कलंक में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए। ये था भी एक आइटम सॉन्ग, जहाँ तक मेरा ख्याल है थोड़ी सी देर

थोड़ी से समय और है, तो हम आपको एक और आइटम सॉन्ग सुनाते हैं। जी नहीं, आइटम सॉन्ग से पहले सुन लीजिए मुजरा। चलिए हम आपको मुजरा सुनाते हैं, उससे पहले आइटम सॉन्ग था ये और अगला गीत है एक मुजरा। चलो सुनते हैं।

वह आशा जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये मुजरा उन दिनों का। चलिए घड़ी पर देखूं तो जी हाँ हाँ जी वी पावन FM पिंतनल पर आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए वो जी हाँ चलिए वो सिलसिला हम थोड़ी सा और जारी कर रहे हैं, आपको एक आइटम सॉन्ग सुना रहे हैं। तो लीजिए ये आइटम सॉन्ग इस तरह से हुआ, क्या बात है। मचाले धूम।

धूम मचा ले धूम। सुनिधि चौहान और साथी मिलके आपको सुनाए हैं ये गीत हमने चलाए। ये भी एक आइटम सॉन्ग है। चलिए एक आखिरी आइटम सॉन्ग आपको और सुनाएंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम थोड़ा बदलेंगे। लीजिए ये आइटम सॉन्ग, क्या ख्याल है।

आयरो गायरो नत्तो खैरो, ये गीत हम आपको सुनाए हैं और फिल्म कलंक में से निकाल कर हमने पेश की प्रीतम के साज पर। जी हाँ, तो अगर जो आई लव यू की बात हुई तो चलिए हम आपको सुनाते हैं मैं तो मुकेश जी क्या कह रहा है इस तरह से।

गा दीवाने झूम के मैथिली मुकेश की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

ये कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

सदियों पुरानी अपनी कहानी और रवि साहब और आशा जी आपको सुनाए रवि के साथ पर फिल्म शहनाई में से निकालकर हम ये गीत पेश किए। चलिए अगर नंबर प्लेयर में ये गीत रखे हैं, इस तरह से सुनते हैं।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ओफरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

आशिक हूँ बहारों का, मैं मुकेश मुकेश जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं ओ मैं दनाख में स्टूडियो में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकलती फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये दुएत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराए में से निकाल कर हमने चलाए हैं, निगती फिर शस्त्र का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया, हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और ऐसे आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

मुझसे भी खफा रहना, माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाए ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनाए हैं। हाँ, अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैथ मुकेश, द हार्ट ऑफ अफिनियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है